मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी

0: उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
2: उपस्थित भक्त जनों, संगीत पीठ रसेश्वर विश्व विख्यात भजन गायक श्री हरिओम शरण आज की शाम हमारे बीच हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हरिओम शरण एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक मंत्र है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। उनको देखने मात्र से ही हृदय में आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत होने लगती है और मन गदगद हो जाता है। श्री हरिओम शरण जी के भजनों में हिमालय सी ऊंचाई है, कल कल करते झरनों सा संगीत है, खिले हुए फूलों सी निर्मल सुगंध है और सागर सी गहराई है। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हरिओम शरण जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी भक्तिपूर्ण मधुर आवाज से आज का कार्यक्रम आरंभ करें।

जिस प्रकार भोर की पहली किरण समस्त सृष्टि को आलोकित कर देती है, अंधेरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार भगवान नामस्मरण सभी जन्मों के पाप रूप कर्मों को भस्म कर देता है और सब प्रकार से मंगल करता है।

ईश्वर ने मनुष्य शरीर हमें इस जगत में अपने और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनने के लिए दिया है, ना कि राग रंग में फंसने के लिए, क्योंकि राग रंग आपको किसी भी शरीर में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परम गति के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा इसी शरीर में प्राप्त होंगे।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति व्याकुलता हो जाती है, जब हमारा चित्त उनके बिना एक पल भी कहीं नहीं लगता, तो वो परमपिता, वो परमेश्वर, वो हमारे आत्मा हमें सहज ही सुलभ हो जाते हैं, हमारे बस में हो जाते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के विचार।
1: बड़े तालाब में बहुत से घाट होते हैं। किसी भी घाट से उतरने पर एक ही पानी मिलता है, इसलिए मेरा घाट अच्छा है, तुम्हारा घाट अच्छा नहीं, इस तरह परस्पर झगड़ना निरर्थक है। इसी प्रकार सच्चिदानंद सरोवर में भी अनेक घाट हैं, सभी धर्म मानो एक एक घाट हैं। यथार्थ में व्याकुल होकर लगन के साथ इनमें किसी भी एक घाट के सहारे आगे बढ़ो, तुम अवश्य ही सच्चिदानंद सरोवर में उतर सकोगे। ऐसा कभी न कहो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ईश्वर के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। जिस नाम और जिस रूप में तुम्हारी रुचि हो, उसी नाम से और उसी रूप में तुम उन्हें पुकारो, तुम्हें उनके दर्शन अवश्य मिलेंगे। जिस तरह छत पर चढ़ने के लिए बांस, रस्सा और सीढ़ी आदि अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुँचने के भी अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय बताता है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए व्यर्थ का शोर मचाता है। जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं। भगवान एक है, यह दृढ़ विश्वास लेकर जो साधना करेगा उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी, फिर वो चाहे जिस भाव से जिस रूप में उनकी आराधना क्यों न करे। भगवान का नाम और चिंतन तुम चाहे जिस रीति से करो उससे कल्याण ही होगा। जैसे मिश्री की डली सीधी खाओ या टेढ़ी करके खाओ, वो मीठी ही लगेगी। ईश्वर एक है परंतु उनके भाव विविध हैं। जिस प्रकार घर का प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है परंतु वो किसी का पिता, किसी का भाई तो किसी का पति लगता है, उसी प्रकार भाव भिन्न भिन्न होते हुए भी ईश्वर एक है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य के अनुसार किसी के लिए दाल भात तो किसी के लिए साबुदाने की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार भगवान ने भी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उपयुक्त साधना की व्यवस्था कर रखी है। ये विचार हैं श्री रामकृष्ण।

0: कृष्ण परमहंस के। वे हिंदू धर्म के शैव, शाक्त, वैष्णव आदि विभिन्न मतों की साधनाएं करते हैं तथा उन साधनाओं के लक्ष्य को प्राप्त कर विभिन्न ईश्वरीय रूपों का दर्शन लाभ करते हैं। केवल हिंदू धर्म तक ही उनकी साधनाएं सीमित नहीं होती, वे इस्लाम धर्म की साधना करते हैं और उनके तत्व की उपलब्धि करते हैं। ईसाई धर्म के अनुशीलन में वे ईसा मसीह का दर्शन लाभ करते हैं। इन सब साधनाओं में निष्णात होने के पश्चात उन्होंने जतो मत ततो पथ का प्रतिपादन किया, जिसका तात्पर्य ये कि जितने मन हैं वे सभी उसी एक ईश्वर के पास जाने के अलग अलग रास्ते हैं। अपनी सरल सहज भाषा में समझाते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक ही जल को कोई वारी कहता है तो कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है तो कोई एक्वा। उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है तो कोई अल्लाह, कोई गॉड तो कोई ब्रह्म। श्री रामकृष्ण की आध्यात्मिक साधना माँ काली की प्रस्तर प्रतिमा के पूजन से प्रारंभ हुई थी तथा उसकी परिणति सभी प्राणियों में तथा समस्त पदार्थों में उसी एक ब्रह्म तत्व की अनुभूति में हुई थी। इसीलिए वे कहते हैं, यदि मूर्त में ईश्वर की पूजा की जा सकती है तो फिर मनुष्य में क्यों नहीं की जा सकती। फिर कभी वे कहते हैं, ये कैसी बात है कि ईश्वर बंद आंखों से दिखते हैं और खुली आंखों से नहीं। तभी तो उन्होंने सिद्धांत घोषित किया कि नर में नारायण को देखते हुए नर की सेवा करना ही नारायण की सच्ची पूजा है। जीव में शिव के दर्शन करते हुए जीव की सेवा ही शिव की यथार्थ उपासना है। और उन्होंने इसी पूजा और ऐसी ही उपासना के लिए हमारा आह्वान किया। ये तथा उनके अन्य विचार एवं आदर्श इतने सशक्त थे कि उन्होंने जगत में सर्वत्र विचारशील लोगों की चिंतन पद्धति में क्रांति ला दी।
1: अभी आप सुन रहे थे रामकृष्ण परमहंस के विचार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं मृदा परीक्षण और भूमि का समतलीकरण विषय पर डॉक्टर एजाज अहमद खान से अरविंद कुमार की बातचीत।
1: किसान भैया खेती किसानी में, चूंकि आज कल खेती किसानी प्रगतिशील खेती किसानी बाटे, तो खेती किसानी में माटी का जांच और भूमि का समतलीकरण भी बहुत आवश्यक चीज बाट। माटी के जांच और भूमि के समतलीकरण से का फायदा होता है और कैसे कीन जाता है, इस सब के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देवे के खातिर आज अपने स्टूडियो में खेती किसानी का विशेषज्ञ डॉक्टर एजाज अहमद खान भैया आए बैठे। आपका भैया अपने स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे हम किसान भाई ये जानना चाहे कि माटी की जांच का है, एक बारे में कुछ बताओ भी।
2: मृदा पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए एक आधार प्रदान करती है। इसी से पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और हमें जीने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थ भी प्रदान करते हैं। हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता तो है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। लगातार पौधों को उगाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी भी होती रहती है क्योंकि इसी पोषक तत्वों को पौधे लेकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे मिट्टी से जो पोषक तत्व लगातार ये लेते रहते हैं तो इनकी मात्रा कम होती रहती है। इसी गिरती हुई उर्वरा शक्ति को पुनर्निर्माण हेतु हम लोग अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उर्वरक खेती में सबसे महंगा आदान है। मृदा में इसकी कमी या अधिकता होने से किसान भाइयों को वांछित लाभ नहीं मिल पाता है, अतः उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण कराकर ही उचित मात्रा में करना चाहिए।
1: भैया एक चीज हम आपसे ये और जानना चाहिए कि जो आप बताएं कि आवश्यक पोषक तत्व, हम कहें कि हमरे सभी के पौधन की खातिर

0: अपने खेत में जौन हमरे सभी अनाज पैदा किया जात है ओकरे खातिर आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हमें एकरे बारे में भी थोड़ा बताओ भी है।
1: पौधों के पूर्ण विकास के लिए लगभग 16 पोषक तत्व पाए होते हैं और ये जो पोषक तत्व हों इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो है कि मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है गौण पोषक तत्व, तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनमें 6 पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे होता है गौण पोषक तत्व, इसमें सिर्फ 3 पोषक तत्व होते हैं, इनके नाम है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तीसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसकी मात्रा पौधों में बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन ये सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये 16 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी उपलब्धि पौधों को आवश्यक है और जिसको लेकर ही पौधे अपना जीवन यापन करते हैं और खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ की मृदाओं में अधिकतर नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक व गंधक की कमी पाई जाती है। धान, गेहूं, फसल चक्र या अनाज वाली फसलों के लगातार लेने से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास का भूमि से अधिक मात्रा में अवशोषण होता रहता है।
0: जी
1: 10 कुंतल गेहूं की उपज लेने के लिए पौधों को भूमि से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 9 किलोग्राम फास्फोरस व 33 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है।
0: जी
1: इसी प्रकार कैल्शियम 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम और सल्फर 4.5 किलोग्राम और जिंक की 56 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। इन सारे तत्वों को पौधे जमीन से ही लेते हैं। इनकी आपूर्ति गोबर की खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद एवं उर्वरकों द्वारा ही किया जाता है। बुआई से पहले ये तत्व मृदा में कितनी मात्रा में विद्यमान है इसकी सही जानकारी मृदा परीक्षण द्वारा ही पता चलता है। इस मृदा परीक्षण के अनुसार ही किसान भाई अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करें तथा उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति भी इससे बनी रहेगी और वे भरपूर उपज भी प्राप्त करेंगे।
0: एक बात हम कहें भैया, चूंकि आप खेती किसानी के विशेषज्ञ में नहीं बांटे, आपसे हम किसान भाई ये जानना चाहे कि माटी परीक्षण का जो बार बार बात हमारे सभी किया जाते हैं इसे लाभ का है एकरे बारे में कुछ बताओ भैया।
1: भूमि की उर्वरा शक्ति की सही जानकारी लेने के लिए जरूरी है कि मृदा का परीक्षण कराएं और ये जब परीक्षण हो जाता है तो किसान भाई को ये पता चल जाता है कि उनकी मृदा में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में है और उसी तत्व के जो मात्रा में जिन मात्रा में पाए जाते हैं उसके आधार पर उसी के हिसाब से किसान भाइयों को खेत में उर्वरक डालना चाहिए। भूमि की अम्लीयता तथा क्षारीयता के बारे में भी मृदा परीक्षण से पता चलता है। इससे उर्वरक की सही किस्म यानी यूरिया डालना है कि अमोनियम नाइट्रेट डालना है या अमोनियम क्लोराइड डालना है इस सब की सही जानकारी किसान भाइयों के इससे पता चलता है। जिप्सम, पाइराइट व चूना की उचित मात्रा का भी निर्धारण भूमि परीक्षण के आधार पर ही करते हैं। मृदा जांच से प्राप्त परिणाम के अनुसार ही किसान कम लागत से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
0: एक बात हम किसान भाई आपसे ये और जानना चाहे कि माटी का जो नमूना लिया जाता है ओकर कौन विधि अपनाई जाए, कौन विधि सर्वोत्तम है जोने सभी से हमारे सभी की माटी की जांच बढ़िया और उत्तम हो।
1: फसल कटने के तुरंत बाद किसान भाई मिट्टी का नमूना लें, भूमि की ऊपरी सतह पर पड़े खरपतवार या पौधों के अवशेष को खुरच कर साफ कर लेना चाहिए और इसके बाद नमूने को खुरपी व आगर से 6 से 9 इंच की गहराई से लें एवं यह नमूना जो है पूरे खेत से 8 से 10 जगहों से लेना चाहिए और उसे छाये में सुखाकर चौथाई विधि से इसको करीब लगभग 1.5 किलोग्राम का नमूना ले जा करके इसको प्रयोगशाला में दे दें। इसके बाद यह जरूरी होता है कि जब ये प्रयोगशाला में दें तो किसान भाई उस नमूने के ऊपर जो पॉलिथीन बैग में रखे रहते हैं या ले जाके देते हैं उस पर अपना नाम, खेत का नंबर, पता आदि लिखकर मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजें।
0: या मृदा परीक्षण की जो बातचीत हो रही बात है एकर मानक का है एकरे बारे में कुछ बताऊंगा।
1: सामान्यता जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बनिक पदार्थ या अम्लीयता है इसका एक मानक होता है। जैसे अगर 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम अगर प्राप्त नाइट्रोजन है तो उसको हम निम्न के कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से अगर 280 से 560 किलोग्राम के बीच में नाइट्रोजन की मात्रा है तो इसको हम मध्यम वर्ग में रखते हैं और अगर 560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है तो उसको उच्च कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस का भी है, अगर 10 किलोग्राम से कम है तो इसको हम निम्न की मात्रा में रखते हैं, निम्न की श्रेणी में रखते हैं और

0: और अगर 10 से 24.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें उपलब्धि है तो उसको मध्यम में रखते हैं, और इसी तरीके से 24.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से है तो उसको हम उच्च कोटि में रखते हैं। और इसी तरीके से पोटास का भी है कि 108 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है तो निम्न, 108 से 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से के बीच में है तो उसको मध्यम में, और 280 किलोग्राम से अधिक है तो उसको उच्च कोटि में हम रखते हैं। इसी तरीके से कार्बनिक पदार्थ के बारे में भी है, अगर 0.5% से कम कार्बनिक पदार्थ है तो उसे हम निम्न, 0.5 से 7.5 है, 0.75 है तो उसे मध्यम, और 0.75 से अधिक है तो उसे हम उच्च कोटि में रखते हैं। किसान भाई को एक बात और हम बता दें
1: जी
0: कि समतलीकरण का भी बहुत बड़ा महत्व है खेती में। अच्छी पैदावार लेने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि समतल होना चाहिए। समतल होने से खाद एवं उर्वरक घुलने के बाद प्रत्येक स्थान पर समान रूप से पहुंच जाता है एवं सिंचाई करने में भी सुविधा नहीं रहती। हर जगह सिंचाई जल आराम से यानी आसानी से पहुंच जाता है। अगर भूमि ढालू है तो निचले स्थानों पर पानी अधिक हो जाता है जिससे वहां की फसल या पौधे पीले पड़ जाते हैं, और ऊंचाई वाली जगह पर जहां पर पानी नहीं पहुंचता वहां पर पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं।
1: भैया हम ई चाहिए चलाओ तो एक सवाल आपसे और करनी चाहिए कि भैया प्रमुख प्रमुख बात का है कि हमारे सभी समतलीकरण और माटी की जांच में उनका ध्यान रखा जाए, बताओ।
0: किसान भाई बुआई से पहले मृदा परीक्षण कराकर ही अगली फसल की बुआई करें एवं मृदा परीक्षण के रिपोर्ट के आधार पर उचित एवं संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। खेत को समतल रखें, ऊंची नीची मृदा एवं ढालू भूमि को यथासंभव समतल करके ही खेती करें।
1: भैया एक तरह से हमारे सभी की जाए तो जरूर फायदा मिले। हम कहें भैया आपकी जानकारी देवे के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मृदा परीक्षण और भूमि समतलीकरण विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर एजाज अहमद खान से अरविंद कुमार की बातचीत। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। और इस कार्यक्रम में हम आपको डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सुनवा रहे हैं, सियाटिका और पैर दर्द का होम्योपैथी द्वारा उपचार।
1: पैरों में दर्द एक आम समस्या है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्ति कभी न कभी महसूस करते हैं। पैरों में दर्द के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में खिंचाव या जिसे हम मस्कुलर क्रैम्प्स कहते हैं, नसों की क्षति जो डायबिटीज़ के रोगियों में सामान्यतः देखी जाती है और जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन डी या अन्य पोषक तत्व तो जैसे कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी, खराब रक्त संचार, गठिया, डीवीटी जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसमें कि रक्त वाहिनियों में थ्रोम्बस या रक्त के थक्के जमने लगते हैं, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनसे पैरों में दर्द हो सकता है। सियाटिका बीमारी में भी दर्द पीठ से निचले हिस्से से शुरू होकर के नितंबों और पैरों तक महसूस होता है। इसमें दर्द के साथ सुन्नपन, झुंझुनी या कमजोरी महसूस होती है। दर्द यदि लगातार बना रहे या बार बार होने लगे तो चिकित्सक से सलाह लेना और आवश्यक परीक्षण करा लेना जरूरी है। होम्योपैथिक में सियाटिका रोग से संबंधित विशेष रोग निवारक दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा पैरों में होने वाले अन्य प्रकार के दर्द का भी लक्षण के आधार पर उचित और रोग की जड़ से निदान संभव है। कुछ प्रभावी और सामान्य होम्योपैथिक औषधियाँ जो रोग के लक्षणों के आधार पर दिए जाने पर बहुत लाभदायक होती है, उनमें से कुछ का विवरण मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। आर्निका मोंटाना, ये चोट लगने पर या अत्यधिक परिश्रम से होने वाले दर्द जिसमें रोगी दर्द वाले स्थान को छूने से परहेज करे, ऐसा दर्द हो जैसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया हो या त्वचा पर नीला रंग या ब्रूजिंग हो, वहाँ पर प्रभावी होती है। रूटा ग्रेव्यूलेंस, ये मूंछ और मांसपेशियों खास तौर पर जोड़ों में होने वाले दर्द, लिगामेंट इंजरीज की अच्छी दवा है। ब्रायनिया, जिन व्यक्तियों में दर्द के साथ जोड़ों में सूजन या लाली हो, मरीज के जरा से

0: हिलने डुलने में दर्द बढ़ने लगे उसके लिए इस दवा का इस्तेमाल लाभदायक है। एक अन्य दवा है कोलोसिंप, जिसमें पैरों में खासतौर पर शियाटिका का दर्द जो मरोड़ के साथ हो, दर्द में दबाव से राहत हो और मरीज दर्द वाली तरफ लेटना पसंद करे जिससे एक दबाव बने और उसे राहत हो, मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो और जो दबाने पर राहत दे। एक और दवा है निफेलियम, जो झुंझुनी के साथ होने वाले शियाटिका के तेज दर्द, पैर की पिंडलियों में होने वाली मरोड़, सुन्नपन, झुंझुनी, इन सब तकलीफ़ों के लिए एक उपयोगी दवा है। रेस्टॉक्स, जो बहुत कॉमन दवा है, पैर की मांसपेशियों की जकड़न और जोड़ों में होने वाले दर्द, जिनमें चलने फिरने के बाद रोगी राहत महसूस करे और नम ठंडे मौसम में दर्द का बढ़ना मिलता हो, उसमें रेस्टॉक्स के इस्तेमाल से राहत मिल सकती है। हाइपेरिकम एक नर्व रिलेटेड पेन की अच्छी दवा है, जिसमें नसों में होने वाले दर्द में रोगी को चुभने वाले दर्द के साथ जलन और सुन्नपन भी महसूस होता है। शाइटिका में इस दवा के लक्षण मिलने पर यह दवा बहुत प्रभावी होती है।
1: सियाटिका और पैर दर्द का होम्योपैथी द्वारा उपचार विषय पर अभी आप डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी की वार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज रात 9:30 बजे चर्चा का विषय है कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, दिन में 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन और रात 10:30 बजे सुनिएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे सौरभ कुमार गुप्ता।

सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे वॉइस ऑफ प्रयागराज। सुबह 10:30 पर हम आपको लोकगीत सुनवाएंगे रामचंद्र मौर्य और साथियों के स्वर में, एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। ये कार्यक्रम आज केंद्रित है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर।

पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई देवदत्त तिवारी से सुनेंगे नीति वचन और शाम 7:31 पर बोलते नगमे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अंतर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदैः वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षित समावेशीय विश्वे च योगदानं दातुं प्रयतते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीरस्य शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यस्य दूरभाषं प्राप्तवान्। कतरस्य रास लफान औद्योगिक नगरे दुर्घटनायां भारतीय नागरिकाणां निधन विषये कतरस्य अमीरः शोकं प्रकटितवान् तथा च घातितानां शीघ्रं स्वस्थतायाः आशां प्रकटितवान्। श्री मोदी प्रभावित परिवारेभ्यः सहानुभूति वचनानां कृते कतरामीराय धन्यवादं दत्तवान्। व्रणितानां कृते शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदानाय च प्रशंसितवान्। द्वौ नेतारौ स्वनागरिकाणां कल्याणं सुरक्षाञ्च सुनिश्चेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। भारतस्य खनिज मन्त्रालयेन 56 महत्वपूर्णानां सामरिक खनिज खण्डानां अथ 11 अन्वेषण अनुज्ञापत्रखण्डानां च सफल सघोष विक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभ खनिज कार्यक्रमस्य महती गतिः प्राप्तास्ति। मन्त्रालयेन सघोष विक्रयणस्य 7 खण्डस्य अन्तर्गतं 10 महत्वपूर्ण सामरिक खनिज खण्डाः सफलतया सघोष विक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तान आक्रमित जम्मू कश्मीरस्य स्थिति विषये कृत टिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोर आलोचना कृता। विदेश मंत्रालयेन कथितं यत् एताः टिप्पण्यः प्रतिवेशी देशस्य स्वस्य असफलताम् अवच्छादनाय स्वस्य मानव अधिकारस्य उल्लंघनात् ध्यानं दूरीकर्तुं क्रियमाणाः निराशाजनकाः प्रयासाः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् भारतम् एतान् कल्पित आरोपान्

काकभुशुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना?

ए हरिहरन के स्वर में आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। सबसे पहले आज हम आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म की रचना। रचना है एसएच बिहारी की, संगीत है शंकर जयकिशन का और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

और अब अंत में हम आपको अग्निपथ की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत अजय अतुल का और आवाज़ है अजय गोगावले की।

और अब अंत में हम आपको अग्निपथ की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की, संगीत अजय अतुल का और आवाज़ है अजय गोगावले की।

0: इसी के साथ फिल्मों से भजन अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश। कहा, आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए कल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल एसआईटी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि
2: हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
3: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। अलीगंज पुलिस की ओर से रविवार देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
4: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
1: लखनऊ में अग्निकांड के बाद कल प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों में जांच अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गा कुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं गोरखपुर बस्ती मेरठ

0: प्रयागराज, जौनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फर्रुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में जांच अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जांच का क्रम आज भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को आग लगने की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि इससे सीख लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री ने हर जिले में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए प्रदेश के सभी जिलों में SIT का गठन कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा को लेकर चलाया जाने वाला अभियान पूरी तरह जनहित में संचालित किया जाएगा। पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम कल घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। UPTET 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। SIT के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य 2 सदस्यों के साथ कल अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है। SIT की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
2: शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय SIT की रिपोर्ट हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंतर्गत आज बेंगलुरु में एक निवेशक रोड शो का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो की अध्यक्षता करेंगे। देश के कई प्रमुख उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 सत्रों के कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों पर एक लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस दौरान निवेशकों को उत्तर प्रदेश की मजबूत बुनियादी ढांचागत व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, क्षेत्रीय नीतियों, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, रक्षा गलियारे, डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रिक वाहन और विनिर्माण क्षेत्र आदि में हुई प्रगति से अवगत कराकर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया,
3: अलिनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और

0: जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर लू की स्थितियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात का एक नया दौर आरंभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य, इमारत को गिराने का नोटिस जारी। कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रदेश भर में जांच अभियान शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के दिए निर्देश, कहा आवासीय भवनों में नहीं होना चाहिए व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित एसआईटी ने गृह विभाग को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट, कहा अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। और प्रदेश सरकार की तरफ से बेंगलुरु में आज हो रहा निवेशक रोड शो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग का आयोजन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के कई उद्योगपति। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन, राग है अहीर भैरव। तबले पर आपके साथ संगत की उस्ताद निजामुद्दीन खान ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन सुन रहे थे राग अहिर भैरव में। तबले पर आपके साथ संगत की उस्ताद निजामुद्दीन खान ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
1: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
0: पहली बार
2: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 26 जून 2026 को शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गाँव संबंधी समस्याएँ अथवा यदि कोई संदेश या धन्यवाद उपस्थित अतिथि धन्यवाद देना चाहते हो तो उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे 26 जून 2026 को शाम 6:30 से 7:15 के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0532297046

0532-2423649, व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970462 और 0532-2423649। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8004926250। सूचना समाप्त हुई।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत

0: चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नागरिकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा

0: कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
2: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर

0: औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रासुल्लाफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से यह आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैनुल अक्वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद असानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
2: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा

0: कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकतदारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुतालिक शराकतदारी का एक अहम रोल है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की, आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखा तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है जब तिजारती शराकतदारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज़ पेश की है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरउम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोयल ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और

0: अमरीका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इक्तिसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इक्तिसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिलोनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीख शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नौजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने IAS 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अज़्म और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हुरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनीनो की वजह से मानसून के असरात से निमटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को

0: लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 15 सेकंड। आइए सुनते हैं अब शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे तार शहनाई वादन का, बलजीत सिंह के द्वारा बजाया गया राग अलहिया बिलावल। ये राग रूपक एक ताल व तीन ताल से निबद्ध है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे असली जीत बनाम दिखावटी दुनिया पर। श्रोताओं, आजकल हर व्यक्ति अपने को परफेक्ट दिखाने में लगा है। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की होड़ लगी है, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर, कितने फॉलोअर्स, ये सब बातें हमें दिखावे की ओर ले जाती हैं। लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, विदेश घूमना, अपनी हर छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ को सोशलाइज करना हमें दिखावे की दुनिया की ओर ही धकेलता है। जबकि असल में हमारी जीत तब होती है जब हम ईमानदारी से, मेहनत से कोई सफलता प्राप्त करते हैं। छोटी नौकरी में भी मेहनत और ईमानदारी के साथ कम पैसों में हम जी सकते हैं, क्योंकि ये हमें आत्मसंतोष देता है। दिखावे में की गई खरीदारी, जैसे लोन पर गाड़ी लेना, लोन पर घर लेना, या फिर किसी भी काम के लिए कर्ज लेना, हमारे दिल दिमाग पर बोझ की तरह होता है। याद रखिए, कर्ज मनुष्य की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को निगल जाता है। जब हम रात को थक कर बिना चिंता के, बिना डर के सोते हैं, तो वो हमारी असली जीत होती है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। हम बात कर रहे हैं आज असली जीत बनाम दिखावटी दुनिया पर। तो श्रोताओं, हमें अपने से होड़ लगानी है, खुद को साबित करना है। हमें अपने और अपनों के चेहरे पर संतोष की खुशी, सच्ची खुशी देखनी है। हमारे हाथ में केवल अपनी मेहनत, अपना कर्म है, फिर उसके बाद परिणाम जो भी हो उसमें संतोष करना है। हमें दूसरों से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए कि वो कितना सफल है। हमें अपनी क्षमता और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। परिवार के साथ जब हम प्यार से बैठकर छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं, उनके साथ कीमती समय बिताते हैं, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहीं उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, तो ये बात उनके दिल में उतरती है। और ये जो ज़िंदगी हम जीते हैं, असल में यही हमारी असली जीत होती है। कभी भी किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाकर हम जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। हमें हमेशा सही रास्ते का चुनाव करना है, दूसरों की सहायता करनी है, उनका सम्मान करना है, उन्हें प्यार देना है। श्रोताओं, अंत में हम यही कहेंगे कि हमें अपने जीवन के मूल्य को समझना है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खासियत है, उसे पहचान कर उसे निखारना है, उसकी कद्र करना है, क्योंकि जो खूबी हमारे पास है वो खास है। और चलते चलते एक कोट कि सबकी जिंदगी के पेपर अलग हैं, इसलिए नकल ना करें। सबके चेहरे पर हम खुशी लाएं, ऐसे काम करें।

0: इसी के साथ नमस्कार प्रयागराज समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं तलाश फिल्म से। आवाज़ है सुमन श्रीधर की, संगीत है राम संपत का और इसे लिखा है जावेद अख्तर ने।

फिल्म संगीत में अब हम आपको हम तुम फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज़ है, प्रसून जोशी के बोल हैं और संगीत जतिन ललित का।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अम्मार रिजवी का।
1: श्रावस्ती जिला 12वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर पूरी तरह योगामय नजर आया। करो योग रहो निरोग के संकल्प के साथ जिले भर में योग की बयार बही। सुबह से ही विभिन्न स्थानों पर उत्साह का माहौल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य आयोजन जिला मुख्यालय पर हुआ, जहां जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा की अगुवाई में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ सामूहिक योग किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पंडाल में मौजूद हर शख्स योग के रंग में रंगा नजर आया। योग का ये उत्सव सिर्फ जिला मुख्यालय तक ही सीमित नहीं रहा। इकोना के स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों, भारी संख्या में आम जनता ने एक साथ योगासन किया। इस मौके पर सभी ने एक सुर में समाज को स्वस्थ और जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। जिले के तमाम सरकारी कार्यालयों, परिषद विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामाजिक संगठनों द्वारा भी अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविरों में योग प्रशिक्षकों की मौजूदगी में विभिन्न योगासन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। साथ ही योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों में वक्ताओं ने योग को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद जरूरी बताया। मुहर्रम के मौके पर श्रावस्ती में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों को प्रशासन का साफ और कड़ा संदेश है। पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, रूट मार्च कर रही है। जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र नासिरगंज, इकोना, पिरवितनी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जहां पुलिस खुद ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। वहीं पीस कमेटी की बैठक के दौरान SDM संजय राय ने नासिरगंज के स्थानीय लोगों से बेहद भावुक और तार्किक अपील की। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, इमाम हुसैन की शहादत पर गम मनाया जाता है, किसी की शहादत पर DJ बजाना बिल्कुल जायज नहीं है, इसलिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। इसके साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ या विवादित पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे जेल की कार्रवाई होगी।
2: प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए गए मुहर्रम त्यौहार मनाने के लिए, उसको सभी लोगों को अवगत कराएंगे तथा सबको विश्वास दिलाएंगे कि पुलिस और प्रशासन त्यौहार को सकुशल मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रशासन के द्वारा अभी रूट मार्च भी किया गया है, ड्रोन से निगरानी की गई है, शांति व्यवस्था कायम है तथा त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा।
1: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षक के महापर्व का आगाज हो चुका। जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान भारी लौ लश्कर और गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ श्रावस्ती पहुंचे। भिंगा में जनप्रतिनिधियों, आला अधिकारियों ने मंत्री का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने जिले को एक बड़ी सौगात देते हुए सामाजिक जन कल्याण एवं जन जागरूक अभियान का भव्य शुभारंभ किया। श्रावस्ती में शुरू हुए एक बड़े बदलाव को लेकर प्रभारी मंत्री ने तारीफ की। सूबे के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़ी खुशी जताई। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर विकास, स्वच्छता और पर्यावरण को एक नई दिशा देने के लिए मंत्री जी खुद जमीन पर उतरे। मौका विश्व पर्यावरण दिवस का था, लिहाजा प्रभारी मंत्री ने सीधे एक्शन का रुख लिया। उन्होंने ऐतिहासिक रानी तालाब पहुंचकर खुद हाथों में झाड़ू थामी और श्रमदान किया। इसके साथ ही देशव्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षक का संदेश दिया।
3: मुझे महसूस हुआ कि गांव का जो गरीब है, जो पैसे के अभाव में जिसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है, आयुष्मान कार्ड देने की योजना में 60 करोड़ लोगों को उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, आज हर गरीब आदमी।
1: श्रावस्ती में प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देशानुसार जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित तथागत सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत ददन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोष्ठी में लगे स्टालों का निरीक्षण किया तथा किसानों को प्राकृतिक खेती करने की नसीहत दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत ने कहा कि आजकल किसान रासायनिक खेती के दौर से अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिसका प्रभाव उन पर और उनकी आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। इसलिए कृषकों से अपील है कि वो रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का।
1: 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2026 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ओपन हॉल पुलिस लाइन सीतापुर में हर्षोल्लास एवं सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर नेहा अवस्थी, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने योग की महत्ता के बारे में बताते हुए सभी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योग व्यायाम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, इससे हम सभी का शरीर स्वस्थ रहता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योग के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने का आह्वान किया। आयुष विभाग द्वारा जनपद के सभी ब्लॉकों एवं तहसीलों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानसून का सीजन शुरू होने के साथ ही सीतापुर में जिला प्रशासन ने लोगों को बाढ़ आपदा से बचाव के हेतु व्यापक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि सीतापुर जनपद की 3 तहसीलें क्रमशः बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होती हैं। यहां प्रतिवर्ष बाढ़ के पानी से एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है। नागरिकों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन समिति के साथ संयुक्त रूप से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसके तहत मुख्य कार्यक्रम बिस्वा तहसील अंतर्गत चहलारी घाट पर किया गया, जिसमें बाढ़ के पानी में डूब रहे लोगों को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा नाव और स्टीमर की मदद से बचाया गया। सीतापुर में टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को सोमवार सुबह 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। नजूल की भूमि पर बने कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस दी गई थी, जिसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया।
2: अवैध कब्जा था इनका और ये हमारी सरकारी प्रयोजन के लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई थी राजकीय महाविद्यालय के लिए। जहाँ भी हमारी नजूल की भूमि और नोटिस दे जहाँ जहाँ दिया गया उसको हम सब खाली करवाएंगे।
1: पौराणिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में सोमवती अमावस्या पर भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ा। अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इसी महत्व के चलते नैमिष क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे भक्तिभाव के साथ आदि गंगा गोमती में स्नान के उपरांत पूजन अर्चन और दान दिया। केंद्र सरकार के सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एवं जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ल ने फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, शौचालय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन के साथ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। गांव को पैतृक सड़कों से जोड़ा गया है। किसान के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं तथा उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान एवं युवा के सर्वांगीण विकास के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सीतापुर पुलिस द्वारा एक अंतर जनपदीय गिरोह को गिरफ्तार कर कई बड़ी घटनाओं को पर्दाफाश किए जाने का दावा किया गया है। इस कार्यवाही में पुलिस को 50 लाख से अधिक की नकदी समेत जेवरात और लग्जरी वाहन के साथ चोरी के एटीएम कार्ड सहित असलाह बरामद किए हैं।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

अभी आप समूह स्वरों में देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

हुसैन की, मेराजे जिंदगी है शहादत हुसैन की, दोषे रसूले पाक पे बैठे थे बिल यकीन, बेहद्दो बेगुमा है फजीलत हुसैन की, गिरिया कुना है आज भी वो वर्जे करबला, देखी है जिसने प्यास की शिद्दत हुसैन की, डूबी हों खूने दिल में तुम्हारी उंगलियां, लिखो सुखनवरों यूं हिकायत हुसैन की। करबला कत्ल गहे अहले तमन्ना है, करबला मजलूमियत का इस्तियारा है, करबला सब्र इस्तकलाल का मीनारा है, करबला वो मुकाम है जहाँ से इंसानियत सुरखरू होकर निकलती है, बंदे हक के लिए मैदान करबला में लश्कर आदा की चमकती हुई शमशीरें नज़ारे ईद से कम ना थीं। दुनिया की कोई भी तहजीब, दुनिया की कोई भी तारीख मैदान करबला जैसा कोई एक सानहा पेश करने से कासिर है। तारीख दे रही है ये आवाज़ दम बदम, दश्ते सबातो अज़्म है दश्ते बलाओ गम, सब्रे मसीहो जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में है सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बद्रो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गरामी हुसैन है। मदीना मुनव्वरा से निकला हुआ पाक नफूस का एक काफिला, जिसमें नवासे रसूल, अहले बैत और चंद रफीकाने सफर थे, मक्का को अलविदा कहा और ये काफिला सुए करबला रवाना हुआ। अंदाज़ा था इस बात का आगाज़े सफ़र से, अशकों की तरह आले नबी निकले थे घर से, दश्ते बला में असगरो अकबर हुसैन हैं, जो गौर से देखो तो 72 हुसैन हैं। करबला ना तो जंग थी न मुकाबला और न ही कोई मारका आराई, क्योंकि यहाँ ना दौलत व हशमत की तलाश थी न ही शहनशाहियत की जस्तजू, बल्कि एक तरीक़ा मज़ाहमत था एक ऐसे ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ायम करदा दीन को मस्क कर रहा था। यजीद के तख्त नशीन होते ही हलाल व हराम का फ़र्क मिटने लगा। हुसैन इब्न अली के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि शरीयत फरमाने शाही के ताबे हो या हाकिम वक्त शरीयत का पाबंद हो। इमाम हुसैन का मुख्तसर सा काफिला सन्दो मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को सरजमीन करबला पर वारिद हुआ। इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से जंग के इरादे से रवाना नहीं हुए थे और ना ही आपने सहाबा इकराम और ताबईन को अपने साथ महाज पर चलने की दावत दी थी। जब करबला में दाखले शाहे दी हुआ, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ,

0: के जहूर से जंगल को चांद लग गया, जहरा के नूर से उतरो मुसाफिरों के सफर हो चुका तमाम, कूच अब ना होगा हश्र तक है यही मकाम, मक्तल यही जमी है यही मशहदे इमाम, ऊंटों से बार उतार के बरपा करो खयाम, बिस्तर लगाओ शौक से इस अर्ज़े पाक पर, छिड़का हुआ है आबे बका यहाँ की खाक पर। काफ़िले हुसैनी के हर फर्द के दिल में शौक़े शहादत का जज्बा मौज़न था, हर एक का मकसद साफ था कि किस तरह दीन मोहम्मदी के गर्दालूद चेहरे को अपने खून से धोया जाए। 5 मुहर्रम अल हराम तक मैदान करबला जालिम यजीद की फौजों से भर गया। इमाम हुसैन और उनके साथियों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। 7वीं मुहर्रम से दरियाए फुरात पर पहरा बिठा दिया गया। किसके लिए लगाए हैं पहरे फुरात पर, मौजें सर पटक रही हैं नहरे फुरात पर, पानी तड़प रहा था निगाहे हुसैन को, वो एक नज़र ही डाल दें लहरे फुरात पर। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन पर बैयत के लिए दबाव बढ़ने लगा, लेकिन लब पे जो इनकार पहले था वो अब भी था। मुश्किलात और शोरिशों का दौर तेज हो गया, लेकिन रज़ाए हक के मतवालों के दिल जज्बे ईमानी से पुरनूर रोशन और ताबनाक थे।
1: ज़ुल्म हद से जब

दस मुहर्रम अल हराम को सुबह शहादत नाजिल हुई। शौक शहादत रखने वालों का जोश हजारहा लश्कर यजीदी से टकराने को तैयार था। एक तरफ हक परस्तों की जमात है तो दूसरी तरफ फरेबियों और मक्कारों का लश्कर है। मैदान करबला में हजरत अली अकबर ने अजान फज्र कहा, नमाजी सफारा हो गए। इमाम हुसैन ने नमाज से फारिग होकर लश्कर आदा को खिताब किया, तुम में से हर एक मुझसे वाकिफ है, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली हूँ। मैंने कभी वादा खिलाफी नहीं की, मैंने कभी नमाज कजा नहीं की, मैंने कभी मोमिन का कत्ल नहीं किया। तुम कैसे उम्मती हो जो वाले रसूल के ख़ानदान को कत्ल करना चाहते हो। आखिर में इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुज्जत तमाम किया, कल रोज़े महशर कोई उज्र ना पेश कर सकेगा। अम्र बिन साद ने पहला तीर फेंक कर जंग का ऐलान कर दिया। हजरत हुर, हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी, हजरत मुस्लिम बिन औसजा, हजरत ज़ुबैर बिन क़ैन एक एक करके जाम शहादत नोश फरमाते रहे। अब अलमदारे आफला हुसैनी हजरत अब्बास ने मश्क सकीना को कमर में बांधा, इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी। इमाम ने फरमाया, तुम मेरे अलमदार हो। जनाब अब्बास के लबों से जुमला अदा हुआ, अब वो लश्कर ना रहा जिसका मैं अलमदार था। सक्काए अहले बैत ने दरियाए फुरात का रुख किया, नहरे फुरात पर हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद कर दिए गए। इधर मैदान रज़्म में हजरत अब्दुल्लाह बिन अली, हजरत जाफर बिन अली, हजरत उस्मान बिन अली की शहादत के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील के तीनों भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन अकील, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील और हजरत जाफर बिन अकील ने भी जामे शहादत नोश किया। फिर हजरत कासिम बिन हजरत हसन चचा हजरत इमाम हुसैन से इजाज़त तलब करके मैदान रज़्म को बढ़े। तीन दिनों के भूखे प्यासे करबला के तपते हुए रेगजार, शिद्दत की गर्मी, मगर इब्ने हसन ने जंग का रुख पलट दिया। पहले अरज़क़ के चारों बेटों, फिर अरज़क़ को वासिले जहन्नम किया। अचानक इब्ने साद ने कई दस्तों को एक साथ हमलावर किया, सैकड़ों से लड़ते हुए हजरत कासिम भी शहीद हो गए। 18 साल के कड़ियल जवान शबी रसूल हजरत अली अकबर ने मैदान जंग का रुख किया। आपकी तलवार दुश्मनों के सर कलम करती गई, दुश्मनों ने नेजे से वार किया, आपने भी जामे शहादत नोश फरमाया। जवान अली अकबर का लाशा देखकर खयाम हुसैनी में कोहराम मच गया। इमाम ने सब्र की तलकीन की और जमीन को खिताब करते हुए फरमाया, तेगों से पाश पाश है सब जिसमें नाजनी, रखियो बाहतियात इसे दामन में ऐ जमी। 18 साल की है ये दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन।

एक एक करके गुलशने जहरा के फूल मैदाने कारजार में काम आते गए। अब तन्हा इमाम हुसैन हैं और हजारों का

लश्कर आधा, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर को। तन्हा हुसैन है और हजारों का लश्कर, इब्ने हैदर की तलवार हजारों पर भारी थी, जिधर का रुख किया सफ की सफ तहे तेख कर दिया, दुश्मनों ने कई सिम से एक साथ तीरों की बौछार कर दी, तन्हा जिसमें नाजनी और हजारों तीर, जख्मों की ताब ना लाकर इमाम हुसैन ने मैदान-ए-करबला में आखिरी सजदा अदा किया।

0: उन्हें इमाम हुसैन से एक नई तारीख रकम हो चुकी थी। हक व बातिल की बाजी तमाम हुई। अंजाम मुबारक हो अजीजो, बातिल हुआ नाकाम। मुबारक हो अजीजो, इमाम हुसैन ने सर दे दिया मगर बैयत नहीं की। नवासे रसूल खुदा ने क़यामत तक के लिए जबर व इस्तबदाद की जड़ें काट दीं। हुसैन इब्न अली की मौजे खून ने एक ताज़ा चमन ईजाद किया जो खून मज़लूम से आज भी सरसब्ज़ो शादाब है। ये फ़कत अजमते किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवारों से कब होते हैं। झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। मेराज जिंदगी है शहादत हुसैन की। सामईन, अभी आप ये तमसीली प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। तहरीर और आवाज़ थी मोहम्मद फर्रुख जमाल की, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: सामईन, अभी समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
2: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए

0: अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में सौरभ कुमार गुप्ता के गाए गीत और भजन। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सौरभ गुप्ता के स्वर में ये रचना है व्यास जी की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे सौरभ कुमार गुप्ता। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेत्री तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर।

यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण साझा जिम्मेदारी विषय पर। तो श्रोताओं, हमारे विषय से ही स्पष्ट है कि जल की बचत किसी एक व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार की ही नहीं, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। यह हम सबके जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही मायने में देखा जाए तो जल संरक्षण एक मुद्दा नहीं बल्कि अस्तित्व की चुनौती है। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% पानी है। इसके बाद भी जल संकट की स्थिति बनी हुई है। तो हम आपको बता दें कि 71% पानी में 97% पानी खारा पानी है, जो कि महासागरों में है, और बचा हुआ 3% पानी पीने लायक है। इस 3% पानी में भी 2/3 हिस्सा ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। तो ये जो 1% पानी बचा है, बस यही 1% पानी हमारे हिस्से में है। और ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि इस 1% पानी पर भारी जनसंख्या का दबाव है, शहर अनियोजित ढंग से बसे हैं, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में इस बहुत कम पीने योग्य उपलब्ध पानी का असंतुलित उपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है, तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है।

पानी की लगातार होती कमी के विषय में एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत में कई शहरों में पानी का संकट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि नल तक सूख जाएंगे। आज भारत में लाखों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ये तो हमारा शहर प्रयागराज है। हम खुशकिस्मत कहे जा सकते हैं कि हम ऐसी जगह बसते हैं जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती हैं, त्रिवेणी है, और यहाँ पानी की इस तरह कमी नहीं है। लेकिन हाँ, गंगा यमुना जैसी इन जीवनदायिनी नदियों को भी प्रदूषित कर दिया गया है। ये नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, भूजल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में यह हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब इसे अपना कर्तव्य मानते हुए इसके संरक्षण में अपना योगदान दें। एक परिवार में जल की बचत के लिए नहाते समय, बर्तन धोते समय, ब्रश करते समय लीकेज से जो पानी बर्बाद होता है उसे रोकें, क्योंकि इन कामों को करते समय पानी बहुत अधिक बर्बाद हो जाता है और अंदाज़ा भी नहीं लगता। नहाते समय हम बाल्टी का प्रयोग करें, शावर का इस्तेमाल ना करें। घरों में कहीं भी नल के टपकने की समस्या हो तो उसे अविलंब ठीक कराएं। बर्तन धोते समय अगर हम बाल्टी का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। बारिश के पानी को भी इकट्ठा करने का उपाय हमें अपने घर मोहल्लों में करने का प्रयास किया जा सकता है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। गाँवों में तालाब, बावड़ी, चेक डैम बनाकर सामूहिक स्तर पर प्रयास किया जा सकता है। प्लास्टिक कचरों को नदियों में ना फेंकें। स्कूल कॉलेज में जल संरक्षण समूह बनाएं।

सरकार की ओर से जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अटल भूजल योजना का पूरा उपयोग करें। उद्योगों को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य करें। कृषि में जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी बौछार विधि ये अपनानी होगी, क्योंकि ये कारगर उपाय है। इस विधि से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कम पानी में ज़्यादा उपज होती है। सरकार की ओर से किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। किसान भाई इससे जुड़ें, जानकारी लें और जल संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। बारिश के पानी को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे गड्ढे या तालाब बनाने से लाभ होगा। जो कुएं सूख चुके हैं उनकी सफाई कराकर उन्हें पुनर्जीवित करना होगा।

उद्योगों में पानी की बर्बादी बहुत अधिक होती है। इसके लिए रिसाइकिल और पानी को ट्रीट करके फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा सकता है। जल संरक्षण के कुछ सफल उदाहरणों में राजस्थान के अलवर जिले में तरुण भारत संघ द्वारा हजारों जोहड़ बनवाकर भूजल स्तर में वृद्धि की गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हर घर जल योजना, गुजरात में सरदार सरोवर नहरों के साथ साथ लाखों चेक डैम और रिचार्ज कुएं बनाए गए। महाराष्ट्र के हिवारे बाजार गांव ने जल संरक्षण से सूखाग्रस्त क्षेत्र को हरा भरा बना दिया। श्रोताओं, ऐसे ही हम भी संकल्प लें कि पानी की एक एक बूंद को बचाएंगे। सिर्फ घर ही नहीं, कार्यालयों में सड़क के किनारे लगे नलों से होती पानी की बर्बादी को रोकेंगे। अपनी गाड़ियों को धोने के लिए पीने योग्य पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो यूज हो चुका पानी है उसका इस्तेमाल करेंगे। वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल भरसक हम ना करें तो अच्छा होगा। घर में लगे पेड़ पौधों के लिए जो सब्जी या अनाजों का धुला पानी है उसका उपयोग करेंगे। ये सारे छोटे छोटे उपाय करके हम जल संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमें इसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाना होगा और आम लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 26 जून 2026 को शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे 26 जून 2026 को शाम 6:30 से 7:15 के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0532297042 और 0532242349। व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर अपने संदेश भी हमें भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0532 जो कि एसटीडी कोड है और नंबर है 2970462 और 2423649 और व्हाट्सएप नंबर 8004926250। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत। आज कलाकार हैं रामचंद्र मौर्य और साथी। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रामचंद्र मौर्य और साथियों के स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रामचंद्र मौर्य और साथियों के गाए लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

आज मैं आपको हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर फिल्म जगत में एक विशेष पहचान बनाई। ये अभिनेत्री हैं करिश्मा कपूर।

करिश्मा कपूर भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध कपूर परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन उनकी सफलता केवल उनके परिवार की पहचान के कारण नहीं मिली। उन्होंने अपने अभिनय कौशल और अथक परिश्रम से स्वयं को साबित किया। वर्ष 1971 में उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की और कुछ ही वर्षों में वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं।

1990 का दशक हिंदी फिल्मों का स्वर्णिम दौर माना जाता है और करिश्मा कपूर इस दौर की सबसे चमकदार सितारों में से एक थी। उन्होंने फिल्मी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्होंने हर प्रकार की भूमिकाएं निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। चाहे भावनात्मक अभिनय हो, चाहे हास्य हो, नृत्य हो, उन्होंने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। करिश्मा कपूर की सबसे बड़ी विशेषता उनका आत्मविश्वास और लगातार सीखने की इच्छा। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने कई आलोचनाओं का भी सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने स्वयं को बेहतर बनाया और आगे बढ़ती रही। यही कारण है कि बाद में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए।

0: ¡Tiarra! ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tara!
1: ये उपलब्धि दर्शाती है कि कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। यदि उनके प्रसिद्ध गीतों की बातें करें तो परदेसी परदेसी ले गई जैसे गीत आज भी लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक पहचान केवल गीतों या फिल्मों से नहीं बल्कि उनके समर्पण और पेशेवर उत्कृष्टता से है। करिश्मा कपूर का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे हमें सिखाती हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, प्रतिभा के साथ साथ अनुशासन, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास भी आवश्यक है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज भी करिश्मा कपूर भारतीय सिनेमा की एक सम्मानित और प्रभावशाली हस्ती मानी जाती हैं। उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम मेहनत करना नहीं छोड़ते तो सफलता अवश्य मिलती है।

इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक के स्वर में तेरे नाम फिल्म का ये गीत। संगीत हिमेश रेशमिया का है और गीत रचना है समीर की।

और आइए आप सुनते हैं अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर के युगल स्वरों में रेस फिल्म का गीत। संगीत राम संपत का है और गीत रचना है जावेद अख्तर की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आइए अब सुनते हैं जन्नत 2 में सफाकत अमानत अली को। संगीत प्रीतम का है और गीत रचना है सईद क्वादरी की। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। जो चाहो तुम पा सको, इतना भी दुश्वार नहीं, सपनों के आगे कोई दीवार नहीं।

और आइए सुनते हैं टू स्टेट्स में शंकर एहसान लॉय और अरिजीत सिंह को। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है।

0: और आइए आप सुनते हैं जावेद बशीर को वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा में। संगीत प्रीतम का है और गीत रचना है रजत अरोरा की। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकलो।
1: दिल से होता है शुरू पर कमबख्त सर पे चढ़ा है, कभी खुद से कभी खुदा से कभी जमाने से लड़ा है, इतना हुआ।

और आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान को जब वी मेट में। संगीत प्रीतम का है और गीत रचना है इरशाद कामिल की। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल

0: ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है, और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं, वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that the rollout of Passport Seva Program 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendras and Post Office Passport Seva Kendras, and record levels of passport issuance are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities, and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. Dr. Jaishankar also reaffirmed the government's commitment to keep making

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में दोपहर 12:15 पर उस्ताद अली अकबर खां का सरूद वादन आप सुनेंगे और रात 10:30 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम

12:30 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 बहने अपना कार्यक्रम सुनेंगी गृह लक्ष्मी। 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 5:15 योजन अपना कार्यक्रम सुनेंगी युवा वाणी।

साढ़े छः बजे पंचायत घर कार्यक्रम में मुशर्रफ अली और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा देवदत्त तिवारी से नीच वचन आपको सुनवाएंगे। 7:31 पर कार्यक्रम होगा बोलते नगमे। 8:30 सबरस कार्यक्रम होगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है। खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन राग मधुमात सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का सरोद वादन राग मधुमात सारंग। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: पवन निषाद, निजी कलापन पत्रा।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बोल और कांटे का।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: कोई भी गाना सुनवा दीजिए, सुनना चाहे।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं फूल और कांटे फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ से मैं राजेंद्र बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है मधुमति
0: जी,
1: और गाने की बोल है सुहाना सफर और ये
0: और ये मौसम हसी, मुकेश की आवाज में है।
1: जी जी जी
0: बहुत अच्छा गीत चुना है आपने राजेंद्र जी, और हम आपको सुनवाते हैं मधुमति फिल्म का ये गाना। लीजिए, सुनिए।
1: नमस्ते मैम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दें।
1: नमस्ते
0: मैम। नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव मोटेरा जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी रोशनी जी, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम बाजीगर फिल्म का।
0: गीत के बोल बताइए।
1: किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने कहा।
0: तो चलिए रोशनी जी की पसंद का बाजीगर फिल्म का ये गाना सुनते हैं, आप भी सुनिए।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। अपना नाम बताइए।
1: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी प्रयागराज।

0: परम आदरणीय मध्य दीदी सादर नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बताइए, पहले अपना नाम बताइए और इसके बाद अपनी फरमाइश भी बताइए।
0: जी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आरणी मधु दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी प्रयागराज से।
1: आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गाना सुनेंगे
0: दीदी? आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है राजपूत
1: जी
0: और गीत के बोल है कह

0: बहुत ही सुंदर प्यारा
1: जी,
0: गीत
1: बहुत
0: आपसे जो
1: अच्छा
0: सुनना
1: गीत
0: चाहता हूँ।
1: है। तो फिर शारदा प्रसाद प्रजापति जी, जिन्होंने हमें मथुरा से कॉल की, इनकी पसंद का ये गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, कार्यक्रम अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी,
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर। कैसी मैम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ विकास जी। कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है मासूम
0: जी,
1: और गाने का बोल है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान।
0: वाह वाह, क्या बढ़िया गाना आपने चुना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है ये।
1: जी जी, ये बहुत अच्छा गाना है।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना विकास जी हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुत थी मधु कुमार की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए, 26 जून 2026 को शाम 6:30 बजे से 7:15 बजे तक विशेष फ़ोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश, धन्यवाद, उपस्थिति अतीत जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे 26 जून 2026 को 6:30 बजे से 7:15 बजे के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 0532 ये कोड है, नंबर है 2970462 और 0532 ये कोड है, नंबर है 2423649। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250 पर अपने संदेश भी भेज सकते हैं। नंबर एक पर पुनः सुन लें, 2970462423649 और कोड है 0532। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान

0: ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगी से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant and maintain constant situational awareness. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further

0: advisories. For assistance, the embassy has issued emergency helpline numbers +98912810-9115, +98912810-9109, +98912810-9102, and +98993217-9359. Indian nationals can also contact the embassy through email at cons.tehran@mea.gov.in and mail to cons.tehran@mea.gov.in. U.S. Secretary of State Marco Rubio has begun a three-day tour of the Gulf region aimed at reassuring key Arab allies following Washington's newly negotiated agreement with Iran after the conclusion of the four-month U.S.-Israeli conflict with Tehran. Rubio arrived in Abu Dhabi late last night and is scheduled to hold talks in the United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain before meeting officials from the Gulf Cooperation Council later this week. The Enforcement Directorate, ED, is conducting search operations at five locations in Delhi in connection with the money laundering case linked to 3,000-kilogram Mundra port drug import case. ED officials said that the searches have been conducted at premises linked to Harpreet Singh Talwar, Samshuddin and their associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. Harpreet Singh Talwar had earlier been arrested by the National Investigation Agency, NIA, in the same case and was recently released on bail. Further investigation is underway. Heavy Industries Minister H.D. Kumaraswamy today urged the steel industry to embrace digitalization as a cornerstone for future growth. Addressing the Chintan Shivir on digitalization in the steel sector in New Delhi, he said the country has maintained its position as the world's second largest steel producer since 2018. The minister said that the crude steel production has grown at nearly 8% annually since financial year 2021-22, while finished steel consumption has risen by approximately 13%, driven by strong domestic demand. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra in the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in the group game match. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के माहिरीन और खसूसी तहकीकाती टीम SIT ने कल मुश्तरका तौर पर लखनऊ के अलीगंज आतिशजदगी के जायवकू का मुआयना किया। जायवकू से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद SIT ने KGMU का भी दौरा किया और जख्मियों से बातचीत भी की। फॉरेंसिक टीम ने मजीद तफ्तीश और मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। नामा निगारों से बातचीत करते हुए लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार ने कहा,
2: हमें कुछ आज मिले हैं, उसके बेसिस पर फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है।
3: हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
1: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई SIT में महकमा सकाफत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत अभिजात और लखनऊ के ADG जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। इधर लखनऊ के डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को मुनद्दम करने का नोटिस जारी किया है। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के वाकये में जान गंवाने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में कोचिंग इंस्टीट्यूट के जाब्ते को मजबूत बनाने और गैर कानूनी इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत भर में फायर सेफ्टी के इकदामात का मिशन मोड में मुआयना किया जाएगा। उन्होंने वाज़े किया कि किसी भी इमारत को सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए उसकी मंजूरी दी गई है। तहखाने में कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम या किसी दूसरी तजारती सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोचिंग इदारों का सर्वे करने की हिदायत दी।

0: गई है। इसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, तुलबा की हिफाजत और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करना शामिल है। इस दौरान एक खसूसी तहकीकाती टीम ने कल लखनऊ में जाए वकूअ का दौरा किया और जख्मियों से मुलाकात की। लखनऊ में आग लगने के बाद मकामी हुकाम ने कल रियासत के तमाम अजला में कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी मुआयना शुरू किया। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस और फायर सर्विस की मुश्तरका टीम ने मुआयने के दौरान कोताहियों का पता लगाने के बाद एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। इस दौरान गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, प्रयागराज, जौनपुर, सहारनपुर, बस्ती, उन्नाव, अमरोहा, अम्बेडकर नगर, फर्रुखाबाद, आगरा और दीगर अजला में जांच मुहिम चलाई गई और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी गई। मुआयना आज भी जारी रहेगा। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मानसून के मुमकिन मनफी असरात से निपटने के लिए किसानों की मदद के लिए पेश की तैयारी कर रही है। कल नई दिल्ली में साफियों से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने कहा,
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को मशवरा दिया गया है कि वो दालों, मोटे अनाज और तेल के बीजों जैसी फसलों को फरोग दें। इन फसलों को कम पानी की जरूरत होती है और ये मुश्किल हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत आज बेंगलुरु में एक सरमायाकार रोड शो का एहतमाम करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ तकरीब की सदारत करेंगे। रोड शो में मुल्क भर से मारूफ सनतकार और सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में बुनियादी ढांचे, ITA ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौजूआत पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी और कारोबारी मौके की नुमाइश की जाएगी और सरमायाकारों को रियासत में दस्तयाब मौके के बारे में आगाह किया जाएगा। UPTET 2026 का इम्तिहान अगले माह 2 और 4 जुलाई के दरमियान मुनक़िद होगा। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि ये इम्तिहान रियासत भर के 60 अजला के 955 मराकज पर मुनक़िद किया जाएगा। एडमिट कार्ड 30 जून से कमीशन की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए दस्तयाब होंगे। और महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि मशरकी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। सीनियर माहिर मौसमियात अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि मौसम का कोई फाल निज़ाम न होने की वजह से मगरबी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मशरकी उत्तर प्रदेश में 28 जून से बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार श्रोताओं,
1: बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी प्यारी सखियों का, सभी श्रोताओं का आपके अपने चहेते कार्यक्रम
0: गृह लक्ष्मी में। तो सभी श्रोताओं और सभी सखियों से हम बस यही कहेंगे कि ट्यून कीजिए 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप को, जी हाँ, जिसे आप हमें दूर दराज बैठे कहीं पे भी इत्मीनान से सुन सकते हैं अपने कार्यक्रम को और हमें भी।
1: तो आज के इस सफर में मैं प्रीति
0: और मैं अनामिका होंगे आपके साथ।
1: एक बेहद खूबसूरत एहसास और जज्बात के साथ जो कुदरत की दी हुई नेमतों में से एक है, तो ये चंद लाइनें उस खास

0: रिश्ते को समर्पित जरा गौर फरमाइएगा।
1: जी हाँ जरूर, कि मुस्कुराहट होठों की तुम बिन अधूरी है। मुस्कुराहट होठों की तुम बिन अधूरी है, जिंदगी के सफर में तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, न मंजिलों की न मंजिलों को न हम रह गुजर को देखते हैं, न मंजिलों को न हम रह गुजर को देखते हैं, अजब सफर है कि बस हम सफर को देखते हैं।
1: तो सभी श्रोताओं और सखियों से हम यही कहेंगे कि आप हमें सुनते रहिए, क्योंकि इस प्यारे एहसास और जज्बात को हम बेपर्दा जरूर करेंगे, लेकिन इस खूबसूरत गीत के बाद।

0: बहुत सूदिंग सा और बहुत ही दिल के तारों को छूने वाला लगा।
1: तो देखो होता है ना कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जब वो सुनो तभी वो अच्छे याद आ जाता है कि अरे वाह ये तो कितने खूबसूरत गीत होते थे ना, और देखो हमने जो वादा किया था उसको निभाया भी। और इस गीत ने उसको कुछ तो पूरा किया, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो तुमने कहा था ना कि बेपर्दा करेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: हाँ उसको
0: तो भाई प्रीति जी मुझे लगता है ना अपनी सभी सखियों का और श्रोताओं की जो व्याकुलता है ना उसे दूर कर देनी चाहिए।
1: हाँ।
0: है ना, क्योंकि उनकी जो व्याकुलता है मुझे लग रहा है इस गीत के साथ साथ
1: और
0: मैंने हाँ और आपने महसूस किया कि भाई वो जो चीजें ना खट खट खट टन टन टन उनके जहन में चल रहा है तो उसे दूर कर देते हैं।
1: तो भाई बस अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि आज जिस पर हम बात कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के जरिए वो है उस हमसफर की जो ईश्वर की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत में से एक है ना।
0: जी हाँ, जिंदगी की इस आपाधापी में प्रीति जी जब हर कोई भाग रहा है और तब कोई ठहर कर आपका हाथ थाम ले तो यकीनन समझ लीजिए कि खुदा ने जमीन पर अपनी इनायत भेज दी है।
1: वो कहते हैं ना जहाँ रूहें मुस्कुराती हैं और वक्त ठहर सा जाता है, यही तो वो पाकीज़ा सा रिश्ता है जिसे हम सफर कहते हैं।
0: अगर हम ये कहें कि हमसफ़र वो है जो ज़िंदगी के सफ़र की सबसे खूबसूरत हकीकत है तो ये कहना मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा नामिका आपने। देखो ज़िंदगी एक खूबसूरत यात्रा है और इस सफ़र पर जिसका कोई तय रास्ता नहीं होता, इस रास्ते पर कभी मखमली धूप है तो कभी कटीली राहें भी, कभी बारिश की बूंदों सी ठंडी छांव तो कभी कड़कती धूप भी।
0: हाँ, और इसके साथ साथ इस उतार चढ़ाव भरी मुसाफिरी में खुदा की दी हुई सबसे अनूठी सौगात अगर कोई है तो वो है एक सच्चा हमसफर।
1: वैसे अनामिका इस बात के साथ मैं एक बहुत ही गौर फरमाने वाली बात कहूँगी कि एक अच्छे हमसफर के साथ होने का मतलब ये तो नहीं है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आना बंद हो जाएंगी, पर इतना ज़रूर है कि जब हम उन मुश्किलों का जो सामना करना हमारे थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि कोई हमारे साथ हमसाया बनकर और सदा हमारे साथ रहेगा।
0: जहाँ एक थकने लगता है तो दूसरा हौसला बनता है, जब एक के कदम डगमगाने लगते हैं तो दूसरा सहारा बन जाता है, और इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि मैं और तुम दोनों मिलकर हम बन जाते हैं।

0: तो वाकई में जो हम सफर होता है उसके जैसा कोई नहीं लगता,
1: कोई नहीं लगता।
0: और लेकिन अनामिका, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वो थोड़ा सा अजीब हो गया है?
1: कैसे?
0: देखो, यहाँ पर हमारे अगर सोशल मीडिया पे अपने जाओ तो तुम्हें हजारों में और कुछ लोगों के तो उससे भी ज्यादा में दोस्त मिलेंगे।
1: जी।
0: लेकिन स्टेटस पे लगाने के लिए भी बहुत सारे तुम्हें तस्वीरें मिल जाएंगी, लेकिन जब तुम्हारा मन उदास हो, जब ये दिल उदास हो और मन के भीतर कुछ टूट सा रहा हो, उस वक्त ऐसा कोई जो हमें समेट ले, एक प्यार सी थपकी दे, उसका कंधा हो, जो हमारी खामोशी को भी समझ ले, ऐसा दिल हो, सिर्फ वो एक ही होता है, आपका हमसफर।
1: बिल्कुल। और ये वो अनूठा रिश्ता है जो आपके ज़िंदगी में सिर्फ खुशियों में मुस्कुराहट ही नहीं लेके आता, बल्कि वो पाकीज़ा दुआ है जो तब भी आपके साथ खड़ी होती है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ पीठ मोड़ लेती है। सफ़र खूबसूरत रास्तों से नहीं बल्कि उस शख्स के वजूद से होता है जो आपकी हर नाकामी में भी आपके साथ मुस्कुरा कर खड़ा रहे और कहे, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा।
0: और इसलिए मैं एक बात और कहूँगी, मानो लगता है कि तुम मिले तो यूं लगा जैसे हर दुआ मुकम्मल हो गई, तुम मिले तो यूं लगा जैसे हर दुआ मुकम्मल हो गई, खोई हुई थी जो राहें वो मंजिल में बदल गई।
1: तेरी मौजूदगी से ही आबाद है ये दिल मेरा, तेरी मौजूदगी से ही आबाद है ये दिल मेरा, ए हमसफर, तू मेरी दुआओं का वो हसीन सिला है, तू मेरी दुआओं का वो हसीन सिला।

0: अल्लाह है जिसके सजदे में मेरा ये सारा जहान झुकता है।
1: बिल्कुल सही कहा अनामिका। देखो ये रिश्ता इतना खूबसूरत है ना, इस रिश्ते को निभाना, इसको सहेजी रखना, ये हमारा दायित्व है। जहाँ हम अपने हम सफ़र के लिए सोचते हैं ना कि कुछ भी हम ऐसा करें इसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो सदा बनी रहे और उसका और हमारा साथ में आत्मसम्मान भी बना रहे, इस बात का भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। उनका मान सम्मान भी बना रहे, बढ़ते रहे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बस देखो छोटी छोटी बातें करना होगा, छोटी छोटी बातें अगर हम अपने मन में, दिमाग में, ध्यान में रखेंगे तो ये रिश्ता बेहद खूबसूरत हो जाता है और इसको निभाना बहुत सरल हो जाता है।
0: जैसे हम बात करें कि जब हम आजकल हम देखते क्या है, एक ही सोफे पर बैठकर अलग अलग रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन ये काम अगर आप भी करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इसे अपनी लाइफ से जितनी जल्दी हो सके डिलीट कर दीजिए और अपने हमसफर को सबसे बड़ा सम्मान ये दीजिए कि जो जब वो आपसे बात करें, आपके साथ बैठें, तो उस वक्त अपना फ़ोन, मोबाइल्स को पूरा बंद करके साइड में फेंक दें, भूल जाएं कि फोन्स भी आपके पास है ना, और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि इस दुनिया के किसी भी नोटिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी आपकी बातें आपका रिश्ता है।
1: हाँ, और वहीं थोड़ी सी एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि कुछ थोड़ा स्पेस भी दें, इस बात का भी ध्यान रखें कि उनको थकान है या फिर वो खामोश क्यों हैं। आपको ये बात समझनी होगी, हर बार कहना तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो हमारा प्यार है उसमें सिर्फ तोहफे देना ही ज़रूरी नहीं और सिर्फ उसमें मैं नहीं, जैसे तुमने कहा ना, हम आ जाता है।
0: बिल्कुल, याद कीजिए वो लम्हा जब आप दिन भर की थकान से घर लौटते हैं तो दरवाजे पर एक आहट, एक मुस्कान और चाय की प्याली कैसे सारी गम भुला देती है। बिना मांगे चाय का कप आगे बढ़ा देना, आपकी आंखों में छिपी उदासी देख सिर्फ इतना पूछ लेना, सब ठीक तो है ना।

0: तो अनामिका, ये तुम्हारे जज्बात तुमने जिनके लिए सुनाए हैं उन तक जरूर पहुंच जाएंगे। और ये जब ये बात हो रही है हम सफर की, तो सखियों आप तो नहीं देख सकती लेकिन आपने इनके जो सुरों से समझ लिया होगा, पर मैं इनकी आंखों में वो चमक देख पा रही हूँ। वाकई में अगर हम सफर इतना प्यारा हो तो मंजिलों की किसे पड़ी है, रास्ते जब इतने खूबसूरत हो तो ठीक है, ये रास्ते चलते जाएं चलते जाएं, मंजिलें खुद आ जाएंगी। और वैसे तुमने जो बात कही ना, मुझे तो बस उससे ये लगता है ना कि जो जो तुमने जो भी गीत गुनगुनाया उसको देख के तो यही लग रहा है कि वाकई में ऐसे ही होना चाहिए। जो बिना कहे दिल की बात समझ ले, खामोशियों को भी आपकी आवाज बना दे, है ना,
1: बिल्कुल।
0: उसके सुरों को भी समझ ले।
1: और एक और खास बात प्रीति जी, सॉरी मुझे लगता है
0: किसी ने याद किया, तो
1: अच्छा
0: ठीक है
1: जी।
0: जिसने याद किया उसको याद करने दीजिए। और वाकई में सखियो, ऐसा जब हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, जिस हम सफ़र की, तो जो हम सफ़र है वो बेहद अपना होता है, बेहद अपने करीब होता है। अभी हम अनामिका से हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो
1: हाँ
0: आंखों में जो चमक आ जाती है, लेकिन कभी जब थोड़ी से जो तकरार हो ना तो वो भी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इस बात का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए और दोनों को रखना चाहिए, है ना। देखिए अभी आपने ये बात कह दी ना कि जो भी तकरार है वो लाजिमी है, लेकिन अगर उनकी छोटी सी भी तारीफ करनी है ना तो हल्ला बोल करके आप महफिल में करें,
0: हाँ
1: लेकिन अगर छोटी सी बड़ी भी कमी है ना तो सच कहूँ तो उसे गले लगा करके अगर आप एक बंद कमरे में सुलझाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, तो वो उतनी ही आत्मीयता से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें दोबारा ना हों। और इसके साथ एक बात का और ख्याल रखें, वो ये कि सिर्फ एक इंसान का साथ तो है नहीं हम
0: हाँ
1: सफ़र, बल्कि दो रूहों का एक खूबसूरत कारवां होता है। ये वो जादुई एहसास होता है श्रोताओं, जो उम्र के हर पड़ाव को खुशनुमा बना देता है। जब चेहरे पर छुर्रियाँ आ जाती हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, तब भी एक दूसरे की आंखों में वही पुराना सम्मान और असीम प्रेम देखना ही इस सफ़र की आखिरी और सबसे बड़ी जीत है।
0: बिल्कुल ठीक कहा अनामिका। वैसे भी श्रोता हूँ, जिंदगी का ये सफर, अगर हम सफर साथ देने वाला है, प्यारा है, तो बहुत खूबसूरत होता है ये ज़िंदगी। तब लगता है कि हाँ वाकई में थोड़ा और समय मिल जाता साथ का। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं ना बार बार कि ये सफ़र बहुत छोटा है, इसलिए इसे शिकवे शिकायतों में ज़ाया ना करें, बस अपने हम सफ़र का हाथ थामे उसकी आंखों में देखते हुए। कुछ ये कह सकते हैं कि शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए।

0: तो भाई देखो, अब बातें हम लोगों ने हम सफर की और बातें करते करते इन प्यारे गीत को सुनते सुनते मेरी नज़र तुम्हारी इन चूड़ियों पे आके टिक गई।
1: अच्छा,
0: हाँ, ये इतनी चमक रही हैं ये तुम्हारी जो सोने की चूड़ियाँ हैं, लगता है जैसे कि तुम तुरंत लेकर ही चली आ रही हो।
1: नहीं प्रीति जी, आप भी खा गई ना धोखा।
0: धोखा
1: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
0: जानती है तो सोने की नहीं है।
1: देखिए, है तो ये सोना, बिल्कुल सही पहचान।

0: ना अपने, लेकिन जानती हैं ये चमक क्यों रही है?
1: क्यों?
0: क्योंकि मैंने ना एक बड़ा ही घरेलू नुस्खा जान रखा है। अपनी दादी नानी के टाइम से मैं इस नुस्खे को जानती आई हूँ।
1: अच्छा, जी हाँ। तो ऐसा ये नई नहीं है, तुमने इनको इतना मेंटेन रखा है?
0: जी हाँ।
1: अच्छा, तो
0: आपको लग रहा है कि ये 2-3 साल पुरानी है?
1: अरे नहीं, मुझे तो मैंने कहा तो मुझे लगा बस तुम लेके चली ही आ रही हो। हाँ,
0: तो मैं बताऊं और आपको भी बता दूं सखियों, आप ना पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और फटाफट ये जो घरेलू टिप्स है ना, उन्हें जरूर नोट डाउन कर लें। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको करना है कि आप लिक्विड सोप और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिए। कैसे करिए? एक कटोरी में हल्का सा गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का गुनगुना कर लीजिए और उसमें कुछ बूंदे माइल्स डिशवॉशिंग लिक्विड की या फिर बेबी शैम्पू आता है ना, जो हम लोग बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा तो गला फंसा जा रहा है, मुझे लग रहा है प्रीति
1: जी। तो देखो, ये बात जो तुमने कही ना, ये मैंने भी अपने घरों में बड़ों को करते देखा है। और जो वो लोग शैम्पू में थोड़ी देर उसको भिंगो देते थे और उसके बाद उसको अच्छे से ब्रश से, एक मुलायम ब्रश साफ कर लेते थे और कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ के एक अलग डिब्बे में रखते थे
0: जी।
1: अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी थी कि मम्मी क्या करती थी कि भाई जो सोने और चांदी के ना गहने अलग अलग रखने चाहिए।
0: हाँ जी, बिल्कुल।
1: हाँ, गहनों को साथ में नहीं रखना चाहिए, उससे भी उनका चमक थोड़ी कम होती है। और एक बेकिंग सोडा मैंने देखा कि बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट बना के वो गहनों को हल्के ब्रश साफ कर लिया करती थी। और जैसे हल्दी का भी प्रयोग मैंने देखा, ये तो मैंने अपनी दादी को सच में करते देखा कि दादी वैसा करती थी कि जो हल्दी है ना, तब तो ये वो शुद्ध हल्दी भी मिल जाती थी, उसको लेकर के वो अपने गहनों पे लगा के और धीरे धीरे ब्रश से साफ करती थी। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें करनी चाहिए और इससे हमारे गहने हमेशा नए जैसे लगेंगे। और जो भी भाई ये सोने के गहने हैं इतने कीमती होते हैं तो इनका मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी है। देखो, हम लोगों ने गहनों की तो बात की, एक चीज़ मैंने आजकल बड़ी नोटिस की है
0: वो
1: कि
0: क्या?
1: जो हमारी ज़िंदगी है, अगर इसको एक लाइन में कहना होगा तो तुम क्या कहोगी?
0: मैं बताऊँ, मेरे दिमाग में तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं।
1: जैसे
0: हालांकि देखिए, कभी कभी मुझे लगता है ना ये कुछ खट्टी कुछ मीठी है।
1: अच्छा,
0: तो कभी कभी मुझे लगता है ना कि बाप रे, जरूरत से ज्यादा ना ये तेज रफ्तार से दौड़ रही, कभी कभी ना इतनी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है मानो मैं किसी जन्नत में हूँ, मुझे तो ये लगता है।
1: अच्छा, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशन होती है वैसा लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कभी खुशी कभी गम, और कभी ये लगता है ना कि बस थोड़ा सा है, थोड़े की और जरूरत है,
0: थोड़े की और जरूरत है।
1: तो भाई, जैसा भी सिचुएशन होती है वैसी हमारी भावनाएं होती है, और इस इमोशन को हम हैंडल भी अलग अलग तरीके से करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तुम कैसे करती हो?
0: मैं बताऊं?
1: सच बताना।
0: मैं सच सच बता रही हूँ। मुझे ना जब ऐसा कुछ होता है, इतनी जोर की भूख आती है।
1: अच्छा,
0: बहुत तेज भूख लगती है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं कितनी चीजें खा जाऊं, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस होड़ में सबसे ज्यादा ना क्या खा जाती हूँ, चॉकलेट।
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा कि पूछिए मत।
1: और पता है अनामिका, ये सिर्फ तुम्हारी दिक्कत नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब वो किसी टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, या किसी मतलब घबराहट में होते हैं, एंजाइटी होती है, या कभी कभी खुशी में भी।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब कोई या उदासी हो, बहुत से कोई भी सिचुएशन हो का होता है, तब ऐसा होता है कि वो कुछ खाने लगते हैं बिना भूख के भी। इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। Yes.
0: अच्छा जी, तो आपकी बातों में ये राज छुपा था और मैं तो समझ ही नहीं पाई।
1: हाँ, क्योंकि मैंने देखा ना, जब तुम परेशान रहती हो तो कुछ कुछ ऐसे कुट कुट कुट,
0: ये मेरी आदत है।
1: तो इसीलिए मैंने पूछा, और ये तुम्हारी नहीं है, मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को करते देखा है कि वो जब वो परेशान होते हैं तो कुछ जंक फूड खाने का ट्राई करते हैं, जो फट से चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, नहीं तो पिज्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, और बाद में वो जैसे तुम अफसोस करती हो वो भी अफसोस करते हैं, बेकार ही खा लिया।
0: आपका सारा टारगेटेड मुझे लगता है आप मुझे लेके बोल रही हैं। आपने मुझे ये सारी चीज़ें करते नोटिस किया बकायदे, अब आज मुझे समझ में आ रहा है।
1: तो देखो, जब हम अपनी सखियों को नोटिस करेंगे तभी तो उन्हें बताएंगे कि इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं अलग तरीके से।
0: वो कैसे?
1: देखो, वो हमें करना ऐसा है कि जब तुम्हें ऐसी लगते हैं ना कि कभी अचानक से क्रेविंग होने लगे कि नहीं नहीं अब कुछ मीठा खा लेना है, चॉकलेट खा लेना है, या कुछ भी ऐसा जंक फूड, दिमाग में तो देखो कुछ परेशानी या कुछ कुछ और चल रहा होता है, तब आपको ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो।
0: अच्छा,
1: कुछ पढ़ लो 10-15 मिनट, कुछ गुनगुना लो।
0: अच्छा,
1: तो इतना अच्छा गुनगुनाती हो।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, कुछ लिख लो, कुछ पढ़ लो, तो वो 10-15 मिनट में ना तुम्हारा माइंड जब डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर एक्चुअली तुम्हें भूख तो लगी नहीं होती है, सिर्फ परेशान हो रही होती है ना, इसलिए वो इमोशनल ईटिंग वो है. कोई ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे अभी शरीर को जरूरत थी तब तुम्हें भूख लगी, वैसे तो होती नहीं है.

0: जैसे ही तुम माइंड डाइवर्ट करोगी तुम्हारी वो भूख जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी और तुम इससे बच जाओगी। समझी?
1: अब मैंने समझा मेरा वेट क्यों इतना गेन हो जाता है बीच बीच में। मैं रेगुलर एक्सरसाइज पे भी रहती हूँ, अगर मैंने थोड़ा भी ये सारी चीजें ना अपनी डाइट में ज्यादा इंक्लूड कर लिया तो मुझे समझ नहीं आता अरे मैंने कितनी चॉकलेट्स खाई थी, अरे मैंने हफ्ते में एक ही बार तो पिज्जा खाया था, वेट कैसे इतना गेन हो गया। अब मैं समझ रही हूँ कि ये मुझे नहीं करना है। और सुनिए, ये सिर्फ मुझे ही नहीं करना है, आपको ब्यूटीफुल लेडीज बनना है ना, दिखना भी है, क्योंकि भाई हमें इतने काम के साथ साथ अपने आप को मेंटेन भी तो करके चलना है। तो भाई आप भी इस बात का बेहद ख्याल रखें जो प्रीति जी सारी चीजें हमें बता रही हैं।
0: और एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, ये तुम्हारी जो पर्स है ना इसमें तुम रखा करो चॉकलेट के बजाय कुछ मखाने या भुने हुए चने। मान लो कभी ऐसे मन कर ही जाए, सिचुएशन आ ही जाए तो कुछ हेल्दी खाओ भाई।
1: ओके ठीक है।
0: तो जैसा कि मैंने कहा, आपने सुना और आपने समझा भी, बाकी लोगों को भी हमें समझाना है, तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। अब तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गीत सुनवा दे।
1: अरे बिल्कुल, नेकी पूछ पूछ बिल्कुल सुनेंगे हम।

0: प्रतिक्रिया का और मैसेज का रहेगा इंतजार। मैसेज के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट करिए।
1: जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250।
0: और इस नंबर के साथ आपकी प्रतिक्रिया का और संदेश का हमको रहेगा इंतजार। दीजिए प्रीति
1: और अनामिका को नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से

0: दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताज़ा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128101915। दूसरा नंबर है +989128101909। तीसरा नंबर +989128101902। और चौथा नंबर है +9899317935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने

0: पांच, दूसरा नंबर है प्लस 9891281091, तीसरा नंबर प्लस 9891281092, और चौथा नंबर है प्लस 9899321793। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में

0: काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए लक्ष्मी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती हैं उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आरके आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल

0: ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे एनसीआर की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम

0: गोपन सर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओ, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी हैं। श्रोताओ, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं, जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes

0: कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
2: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
4: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल के। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर

0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
2: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
2: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
4: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि रामकथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
4: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
4: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
4: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
4: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुलके।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को

0: सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूँ।
1: जी
2: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
0: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
2: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
0: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।

0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हमारी आज की ये सभा अब सम्पन्न होती है। अगली सभा में 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, हमारे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं फिल्म सौदागर का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म डेंजरस इश्क का गीत राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। शब्द रचना है शब्बीर अहमद की और संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

0: फिल्म डेंजरस इश्क के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: हेलो साथियों,
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो युवानी,
1: जहां हम बात करते हैं युवाओं की,
0: उनके सपनों की,
1: उनके संघर्षों की
0: और उन अनकहे एहसासों की जो अक्सर दिल के किसी कोने में छुपे रह जाते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या द्विवेदी
1: और मैं हूं साक्षी पांडे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी सचमुच बहुत खूबसूरत है। कभी ये हमें खुलकर हंसना सिखाती है
0: तो कभी मुश्किलों का सामना करना,
1: कभी दोस्ती के रंग भरती है
0: तो कभी अकेलेपन में कुछ पल भी दे जाती है। कहते हैं ना कि अगर पौधे को सही समय में पानी ना मिले तो वो हरा भरा नहीं रहता है, और सही समय में पानी दे दिया जाए तो वो हरा भरा हो जाता है।
1: ठीक वैसे ही अगर इंसान के मन को प्यार, समझ और सहारा मिले तो वो भी खिल उठता है।
0: लेकिन अक्सर हम अपने शरीर की थकान को तो पहचान लेते हैं ना दोस्तों, लेकिन मन की थकान उसको अनदेखा कर देते हैं।
1: और दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब अपने अपने लक्ष्यों की दौड़ में लगे हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, रिश्तों की उलझने,
0: सोशल मीडिया की तुलना और भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब कभी ना कभी हमारे मन को इतना असर दे जाती हैं, इतना इस पे असर डाल जाती हैं कि हम अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है साक्षी कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी परेशानी किसी को बताएंगे ना तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे।
1: लेकिन दिव्या, सच्चाई

0: ये है कि अपनी बात कहना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। इसीलिए आज के प्रोग्राम में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ और खुलकर बात करने की ज़रूरत।
1: और आज हम समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्यों है उसकी इतनी ज़रूरत, और आज के दौर पे जहाँ युवा इतनी सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, इतनी सारी चीज़ों को फेस कर रहा है, इसकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए, क्यों है इसके देखभाल की ज़रूरत, आखिर क्यों अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साझा करना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों और साक्षी, मुझे लगता है कि इस पर अभी बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल यू टर्न लेना बनता है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: वेलकम बैक दोस्तों। तो हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य पर, तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम ये जान लें कि आखिर मेंटल हेल्थ है क्या।
4: तो दोस्तों, हम जब स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो अक्सर हमारे मन में शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आता है कि हम उस पर बात करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी में होना ही नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
3: दोस्तों, मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारी जो इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल सिचुएशन है ना, वो उससे रिलेटेड होता है। ये तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और अपनी लाइफ की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं।
4: अगर किसी दिन आप उदास महसूस करने लगें, तनाव में हों या चिंता महसूस करें, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन जब ये भावनाएं लंबे समय तक बनी रहें और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये आपको प्रभावित करने लगें, तब हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
3: दोस्तों, दुर्भाग्य से आज भी मेंटल हेल्थ को लोग कोई को लेकर लोग गलत धारणाएं बना के बैठे हैं। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को मानसिक परेशानी है, सिर्फ वो कुछ लोगों को ही हो सकती है या फिर यह कोई कमज़ोरी है, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन के किसी भी पड़ाव पर कोई भी व्यक्ति मानसिक तनाव या इमोशनल चुनौतियों का सामना कर सकता है।
4: साक्षी, कभी कभी हम बाहर से जो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन भीतर हमारे बहुत कुछ चल रहा होता है। मन में सवाल होते हैं, डर होते हैं, चिंताएं होती हैं, और जब हम इन्हें लगातार दबाते रहते हैं ना, कंप्रेस करते रहते हैं अपने अंदर, तो उनका बोझ बढ़ता जाता है।
3: बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जब हम किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी बात को शेयर करते हैं तो मन थोड़ा हल्का महसूस करता है। प्रॉब्लम तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन उसे संभालना हमें आसान लगने लगता है।
4: बिल्कुल। ऐसा कभी होता है ना, जब हम अपने दोस्तों से या फिर कोई एक खास इंसान या हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में भी जब भी माँ होती हैं तो हम उनसे बता देते हैं, या अपने किसी खास दोस्त से अपनी वो परेशानी बता देते हैं, तो ऐसा लगता है कि मन का सारा बोझ हल्का हो गया।
3: हाँ।
4: और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो, एक भरोसेमंद इंसान हो, जिसको हम अपने मन की बात बिना डरे, बिना सोचे समझे बता सकें, और हमें इस चीज़ का डर भी ना हो कि वो हमें जज करेगा या हमें गलत समझेगा।
3: और इसी को कहते हैं इमोशनल सपोर्ट।
4: बिल्कुल।
3: और इसी टाइम पे दोस्तों आपको पता चलता है कि आपके अपने कौन है, क्योंकि मेंटल हेल्थ सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग इसके लिए, मैंने अभी हमने बात भी की कि लोग अलग अलग धारणाएं बना के बैठे हैं, गलत धारणाएं। लोगों को लगता है कि किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है मतलब वो पागल है। सीधा मतलब होता है मेंटल हेल्थ मतलब पागल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंटल हेल्थ किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है ना, या फिर किसी के साथ ऐसी चुनौतियां हो रही हैं उसके सामने जो कई सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ टैकल नहीं कर पा रहा है।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब सिचुएशन हो सकती हैं। इसलिए जैसे फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो किसी को फीवर हो गया है ना, एक्ने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे मेंटल हेल्थ भी कई सारी प्रॉब्लम्स में हो सकती हैं।
4: बिल्कुल।
3: तो आपको इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है।
4: बिल्कुल। और इस पर खुलकर बात करनी चाहिए साक्षी, क्योंकि कई बार

0: हमें हमें लगता है कि हम सिर्फ इस पर सलाह से काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की हमें हमेशा ज़रूरत महसूस होती है जो हमें बिना जज किए सुने, जैसे मैंने बोला, और एक अच्छा श्रोता कई बार सबसे बड़ी मदद साबित होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और याद रखिए, हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी मैं ठीक नहीं हूँ कहना भी बहुत बड़ी ताकत होती है।
0: बिल्कुल, आज के युवाओं के सामने अवसर भी बहुत होते हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी उससे ज़्यादा हैं। पढ़ाई हो गया, प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई, करियर हो गया, रिश्ते हो गए और सोशल मीडिया हो गया। सब कुछ एक साथ संभालना आसान तो नहीं होता।
1: और दोस्तों, साथ में एक प्रॉब्लम और है कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर दूसरों की सक्सेस देखते हैं और खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। बट ये गलत है, क्योंकि सबका अपना अपना एप्टीट्यूड है। आप उसको पहचानिए और उस पर काम करिए, तो
0: बिल्कुल
1: शायद आप दूसरों से तुलना ना करें। जब हम अपने लाइफ में बेटर नहीं कर रहे होते हैं, अपनी अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होते, तभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम दूसरों से कंपेयर करने लगते
0: और
1: हैं।
0: बिल्कुल साक्षी, हम कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दबाव आ गया है हमारे समाज में कि अगर हम देखें, डिप्रेशन हो गया या किसी भी मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें, तो उसका मेन कॉज जो है वो सोशल मीडिया ही है।
1: अगर वो
0: तो
1: आपको इंस्टेंट खुशी दे रहा है, तो आपको लॉन्ग
0: इंस्टेंट,
1: टर्म दुख भी दे सकता है
0: बिल्कुल।
1: वो।
0: और जब हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, किसी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हमारे अंदर भी काबिलियत है, बट हम कर क्यों नहीं पा रहे, हम क्या इतने काबिल नहीं हैं, हमें कोई कमी है। तो हम सिर्फ वो फोटो देख रहे हैं या फिर वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो इंसान सक्सेसफुल है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितने सारे फेलियर्स हैं, ये हम कभी नहीं देख पा रहे हैं,
1: और
0: है
1: दोस्तों,
0: ना।
1: एक बात और है कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो लाइमलाइट देखते हैं, वो अलग टाइप के स्टोरीज देखते हैं, वो सारी चीज़ें सच नहीं होती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला बहुत सक्सेसफुल हो गया है, या फिर हमारे दोस्त सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या पता रियलिटी कुछ और हो, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो आपको फिल्टर्ड चीज़ें देख करके इन्फ्लुएंस नहीं होना और दुखी नहीं होना है, आपको रियलिटी के बारे में जानना चाहिए।
0: दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर किसी की पूरी कहानी नहीं होती। जैसा अभी साक्षी ने बोला, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चुनौती से गुजर ही रहा होता है।
1: इसलिए दोस्तों, खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने ग्रोथ पर ध्यान देना ज़रूरी होता है, और छोटे छोटे स्टेप्स से भी आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण होते हैं।
0: तो अब हम बात करते हैं साक्षी, कुछ ऐसी आदतों पर जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं।
1: और उसमें सबसे पहले है, अपने इमोशंस को पहचानिए। अगर आप उदास हैं, परेशान हैं या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए, और उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी।
0: सबसे बड़ा यही हमारे लिए सॉल्यूशन होगा कि हम पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करें। दूसरा है पर्याप्त नींद। 8 घंटे की नींद एक एडल्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छी नींद मन और शरीर दोनों के लिए आवश्यक होती है। आपका मन शांत होता है, कॉर्टिसोल गिरता है, और जो हमारे फील गुड हार्मोन होते हैं, जैसे हमारा
1: डोपामाइन
0: डोपामाइन हो गया, वो रिलीज़ होने लग जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लग जाता है। तो जब ये रिलीज़ होते हैं तो हमारे शरीर को थोड़ा सुकून मिलता है और मेंटल इलनेस भी दूर होती है।
1: जैसे हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो खुद को भी चार्ज करिए, उसको भी टाइम दीजिए। और तीसरा है कि आप नियमित व्यायाम या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट करती हैं।
0: बिल्कुल। तो चौथा है, अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहिए। अपने आसपास की दुनिया में जो आपके अपने हैं, उनसे कभी दूरी ना बनाएं। बातचीत रिश्तों को सबसे मजबूत बनाती है, और वो हमारे लिए भी, एक इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। जब हम अपने परिवार के बीच में बैठते हैं, अपने लोगों के बीच में बैठते हैं, तो एक अलग ही खुशी भी देती है और एक अलग सी शांति देती है, और वो भावनात्मक रूप से भी हमें सहारा दे रही होती
1: हाँ,
0: है।
1: साथ में अगर अपने मन में सारी बातें आप रखे रहेंगे, तो आपका मन भारी होता जाएगा,
0: बिल्कुल
1: तो उसको हल्का करिए। और अगर कभी आपको लगे कि परेशानी आपकी कैपेसिटी से बाहर जा रही है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो किसी विशेषज्ञ या कंसल्टेंट से मदद लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें।
0: दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य कोई एक ऐसा विषय नहीं है जिसे छुपाया जाए या नज़रअंदाज किया जाए। हमारे जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है।
1: अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो उसे सलाह देने से पहले उसकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। कई बार सिंपथी और

0: ही सबसे बड़ी दवा बन जाती है।
1: और अगर आप स्वयं भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मदद मांगना बिल्कुल ठीक होता है और जायज़ भी है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, उस व्यक्ति से साझा कीजिए जो आपको सुन सकता है, बिल्कुल ठीक है। और आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रख सकते हैं और उसे रखना बिल्कुल ज़रूरी है।

0: तो दोस्तों अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए कुछ खास। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलज्ञ सिन्हा, जो कि एक छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिनके अंदर संगीत की प्रतिभा भी है, जो गाने का हुनर भी रखते हैं और आज अपनी कला को हमारे साथ साझा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम शैलज्ञ सिन्हा है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं CMP डिग्री कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और आज मैं आपके सामने दो कृष्ण भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला भजन मनमोहन मूरत तेरी प्रभु है।

तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे भजन हमारे साथी शैलज्ञ सिन्हा के साथ। आइए हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: संगीत साधक की, जिनकी आवाज़ सिर्फ सुर से नहीं बल्कि भावनाएं, भक्ति और देशभक्ति से भी झलकती है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज पर, जहां हम बात करेंगे भारत के महान शास्त्रीय गायक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के बारे में।
1: दोस्तों, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जन्म 24 जून 1897 को गुजरात के बड़ौदा राज्य में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था, आर्थिक कठिनाइयां थीं, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्रेम और समर्पण अद्भुत था। कहते हैं कि अगर जुनून सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।
0: उन्होंने प्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर केवल गायक नहीं थे, वे संगीत के साधक माने जाते थे। उनके संगीत में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आत्मा की भाषा थी,
1: और यही कारण था कि जब वे गाते थे तो लोग केवल सुनते नहीं थे बल्कि महसूस करते थे। उनके गायन में भावनाओं की गहराई इतनी थी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
0: और एक बात और साक्षी, एक बहुत दिलचस्प बात है उनके बारे में कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का मानना था कि संगीत में हीलिंग पावर होती है। संगीत मन को शांति देता है और इंसान को सकारात्मक बनाता है।
1: और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाया। विदेशों में भी उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव बढ़ाया था।
0: पंडित जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी और भारतीय संगीत परंपरा को आगे बढ़ाया।
1: दोस्तों, आज के समय में जब हम इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत, अनुशासन और समर्पण ही असली मंत्र है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, संघर्षों के बीच भी उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा।
0: कहा जाता है कि जब वे किसी राग की प्रस्तुति करते थे श्रोताओं, तो श्रोता संगीत में पूरी तरीके से डूब जाते थे। उनकी आवाज़ में अद्भुत शक्ति, मधुरता और भावनात्मक गहराई थी।
1: दोस्तों, उन्होंने संगीत की शिक्षा महान गुरु विष्णु दिगंबर पलुस्कर से प्राप्त की थी, जैसा कि दिव्या ने पहले भी बताया, और उन्होंने देश विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार भी किया। साथ ही दोस्तों,
0: उनके अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा देकर उन्होंने इस विरासत को आगे भी बढ़ाया था। एक बहुत रोचक बात है उनके बारे में कि रागों के भाव का अर्थ कैसे समझा जाए, वो इस पर जोर देते थे और अपने विद्यार्थियों को भी ये सिखाया करते थे कि राग को सिर्फ गाया नहीं जाता है, उनके छिपे हुए भावों को समझना और उसे बखूबी अपने संगीत में उतारना ये महत्वपूर्ण होता है, ताकि सुनने वाला जो इसके बारे में नहीं जानता, जो इस संगीत को, इस राग को और इसके भाव को बिल्कुल नहीं समझता, वो इससे अपरिचित है, वो भी इसे महसूस कर सके, उसकी शांति को, उसके उसके स्थिर भाव को अपना सके अपने अंदर, वो इस पे ध्यान देते थे। उनका मानना था कि संगीत तभी प्रभावी होता है जब उसके भाव और उनकी अनुभूति दोनों एक लय में हों।
1: साथ ही दोस्तों, उन्होंने अपनी संगीत का कार्य संगीत के माध्यम से समाज कार्य में भी योगदान दिया, और इसीलिए कहते हैं कि एक कलाकार तभी महान बनता है जब वह अपनी कला को समाज की सेवा का माध्यम बना दे। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने संगीत को मानवता से जोड़ा। और आइए अब जानते हैं कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं।
0: उनकी पहली सीख थी, श्रोताओं, अपने पैशन को पहचानिए और उसको पूरी ईमानदारी से अपनाइए।
1: दूसरी सीख कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर लगन सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है।
0: और तीसरी है डिसिप्लिन और कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, जो किसी भी क्षेत्र में एक्सेलेंस की कुंजी होती है।
1: और चौथी सीख है अपनी प्रतिभा को केवल अपने लिए नहीं, समाज और देश के लिए भी उपयोग कीजिए।
0: और अपनी सच्ची सफलता दोस्तों वही होती है जो आपके व्यक्तित्व में विनम्रता और मानवता बनाए रखे।
1: तो दोस्तों, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जीवन हमें बताता है कि अगर सुरों में साधना हो तो केवल संगीत नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाता है।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होने को है। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे जो कि है yuvvaniald@gmail.com पर, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 8004926250 पर।
1: साथ ही दोस्तों आप हमें सुन सकते हैं 100.3 FM, उसके साथ ही न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर, और आप हमें सुन सकते हैं वेव OTT प्लेटफॉर्म पर।
0: इसी के साथ मैं दिव्या
1: और मैं साक्षी
0: लेते हैं आपसे विदा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी

0: का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा रात 9:30 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 बजे किसान भाई सुनेंगे देवदत्त तिवारी से नीति वचन और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से की गई बातचीत। सुनवाई जाएगी छिटकवा विधि से धान की बुआई। शाम 7:31 पर हमारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित होगा बोलते नगमे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का होगा। मिले जुले गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस श्रोता सुनेंगे रात 8:30 बजे। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन सुनवाया जाएगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम शाम 4:00 बजे होगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा शाम 6:30 बजे से। और दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 6:35 पर कृषिगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर त्रिभुवन यादव से की गई बातचीत। पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र दयाल की वार्ता होगी जलने पर प्राथमिक उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनिए सुबह 7:30 बजे। पंडित DR पार्वतीकर का दत्तात्रेय वीणा वादन दोपहर 12:15 बजे सुनवाया जाएगा। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम सुबह 8:45 पर होगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में राजेश कुमार के गाए भजन और गीत सुनाए जाएंगे सुबह 9:50 पर। मल्लिका चटर्जी डॉक्टर राजकुमार के गाए लोकगीत आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 10:05 पर। आशीष कुमार और साथियों के गाए लोकगीत दिन में 10:30 बजे प्रसारित किए जाएंगे। बोलते नगमे, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दिन में 11:30 बजे। श्रोता अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे आपकी पसंद 12:30 बजे। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी वंदना श्रीवास्तव की कहानी और जानकारी लेंगी मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने के फायदे के बारे में। NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे। शाम 5:15 बजे युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 MHz पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।
0: एक आवश्यक सूचना श्रोताओं, दिनांक 26 जून 2026 को शाम 6:30 बजे से 7:15 तक विशेष फोन इन कार्यक्रम पंचायत घर के अंतर्गत हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाई बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश, धन्यवाद, उपस्थिति अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे 26 जून 2026 को सायं 6:30 बजे से 7:15 बजे के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए 0532-2970462 और 0532-242-3649। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। इस पर भी आप संदेश भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0532-2970462 और 0532-242-3649। व्हाट्सएप नंबर 8004926250। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM

अभी आप सुन रहे थे देशगान संवेद स्वरों में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: क्षेपोऽपि कृतः। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधित सुरक्षा परामर्शः निर्गतः, यत्र हि अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् उपादिष्टम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तान देशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधिद्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रिया रूपेण एषा टिप्पणी कृता।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रिया रूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषये भारतस्य दीर्घकालस्य स्थितिं पुनरुद्घाटयच्च भारतीयः राजदूतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य अशीति संरचनायाः अन्तर्गतस्य संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आदेशानां वर्तमान समीक्षायाः विषये अपि अवदत्, यस्योद्देश्यं सम्पूर्ण संस्थायां कार्यक्षमतां वर्धयितुमस्ति। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् अपि उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईराने निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210115 9891210119। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। सियोलद नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: कंटेम्पररी रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमे एकेन संदेशेन विदेश मंत्रिणा

0: सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसंपर्कमित्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्यमन्त्री मनोहर लालः अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थानके निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मन्त्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामि दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मूकश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्य प्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थितिः अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 14 यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमाचानु करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डीआर कांगो देशं 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुने, पंचायत घर।

0: अंचो राम राम।
1: का मन्नू भैया?
0: हाँ भैया।
1: देखा भाई, गर्मी तो मजे के पड़त बाटे,
0: खूब
1: खूब
0: खूब
1: करे
0: खूब
1: रुझा
0: पड़त
1: बाटे।
0: भैया, बहुत कर्रा घाम होत बा।
1: तो ऐसन में तो एक बात ही बाटे भाई कि शरीर का ख्याल रखें पंचहरे, खासतौर पर भाई अगर कोनो खेती किसानी काम बा या बड़ बाजार जाए के बाटे तो कोशिश ही करें कि भाई सवेरे संझा हो लें तो बढ़िया बाटे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, दोपहरिया में तो कतई ना निकले लायक बा। और अगर कोनो मजबूरी दिक्कत बा, निकले के पड़त भैया ना, तो बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहन के निकलें
1: भाई
0: और
1: शरीर
0: मूड़
1: ढके
0: कपार
1: भाई
0: एकदम ढक के निकलें,
1: कही
0: खूब
1: जा
0: पानी
1: कही।
0: पी के निकलें।
1: और भाई गोड़ों में पनाही जूता या
0: हाँ।
1: चप्पल या तरीके से पहने
0: नहीं
1: रहें
0: नहीं भैया, देखा हो गोड़वा अगर खुला रहा था तो लगत जैसे आग का लपट लगत हो
1: तो
0: के है।
1: लपट लगत बाटे। और दूसर बात एक ही कहे कहे कि भाई एक साथे साथे खान पान का भी ख्याल रखे के बाटे,
0: बहुत ज़्यादा बहुत
1: कहे
0: ज़्यादा।
1: के यही समय में देखा था हैजा और यह तरीके की बीमारी बहुत फैल जाता है।
0: अब भैया जब इतनी गर्मी रही, और मान ला कि कबो कबो का होते कि खाना बना के रखे बहुत देर का और बाद में ओके खाते थे, तो गर्मी में खाना भी खराब हो जाता भैया।
1: तो भाई बासी ना खाएं, बहुत भल बात कह। दूसर बात यह है कि यहाँ मौसम में, यहाँ टूर में खासतौर पे जो जल का स्रोत बाटे ना भाई, वो नीचे चला जाता था तो पानी कभो कभो कुआं इनारा कहो या हैंडपम्प कहो घोगड़ा ही लावा था, साफ ना ही रहते। तो अगर ऐसा कोनो शक सुबह बाटे तो हम तक आते भाई पानी के उबाल के छान के तब पिए खाए के तो इस्तेमाल करें।
0: अब भाई देखा, हम कहें कि पानी की शुद्धता पर सबसे ज़्यादा जोर देवे की ज़रूरत है, तो सबसे बढ़िया रास्ता ये होता है कि पानी के खूब उबाल ले बढ़िया से, और उबाल के रख दे, ओके ढक के रख दे, ठंडा हो जाए, ओके पिए, लेकिन उसे फिर कोनो नुकसान नहीं होता।
1: नुकसान नहीं होते। और एक बात यह है कि भाई अपने साथे साथ जो गोरू बछेरू हैं लेरुआ हैं उन्हों का ध्यान रखें भाई, गर्मी उन्हों को लागत है ठंड उन्हों को लागत है। तो ऐसा न करें कि घाम का तो जानवर
0: नहीं
1: बहरे
0: नहीं
1: तहारा
0: नहीं
1: तहाँ या
0: भैया,
1: बाहरे बना ना आए। जब भाई सवेरे संझा तनी छाँव हो जाए तब बाहरे निकालें। और हम तो कहते भाई अगर रोज उनका नहवाए जाए ना मन्नू भैया तो शरीर बड़ा फरहर रहा
0: अरे
1: था।
0: काहे नहीं भैया, देखा हो अपने अगर बढ़िया से ना नहा संझा सवेरे, तो लगत है कि देखा शरीर जो ना स्थिर ना होता है। तो वही तरीके से अपने पशुओं के भी देखे, और देखा कहा भी जाता ना कि खेती किसानी पशु परानी बाग बागवानी कुल
1: हाँ
0: साथे
1: हाँ
0: होते भैया। तो अपने बागवानी का भी नमी का ध्यान रखें, अपन जौन भी इस समय में फसल खेत में बा, सब्जी का खेती बा, ओहकर नमी का ख्याल रखें। नर्सरी का भैया विशेष तौर पर ख्याल रखें
1: कह गया भैया
0: कि
1: कह
0: नमी
1: गया,
0: होमन तनिको कम न होके पावे।
1: नहीं तो पेड़ झुलस जात
0: हाँ,
1: भैया।
0: झुलस जाता। पशुओं का भी ध्यान रखें। एक बात भैया और कहबो,
1: कहो
0: देखा अपन जो खेती किसानी बा ना, तो प्रगतिशील किसानी बा, नया नया तौर तरीका बा, वैज्ञानिक तौर तरीका बा, साथे साथे देखा कुछ अपन जो पारंपरिक तौर तरीका रहा ना पुरान जमाने में, तो आधुनिकता के साथ साथ कुछ जो बढ़िया चीज़ है, पारंपरिक चीज़ जो रहे, जैसे देखा पहले के ज़माने में फसल चक्र लोग जो ना कि नियमित तौर पर व्यवस्थित ढंग से अपनावे लोग, तो हम कहीं कि देखा कुछ पारंपरिक खेती किसानी का तौर तरीका जो फायदेमंद बा, ओके आज भी अपनावे के चाहिए। और फसल चक्र तो देखा जितने भी कृषि के वैज्ञानिक लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो बराबर कहते हैं कि भैया ई ना कि कोनो खेत के बनाए लिया तो हर साल वही में एक चीज़ लगावा, हर साल धान लगावा, हर साल गेहूं लगावा, ना भैया। अगर समय और मौसम के अनुसार वर्ष दर वर्ष भाई हम कहें कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद
1: ये भी
0: बदल
1: गेहूँ,
0: बदल के लगावे।
1: हाँ गेहूँ वो था तो कभो कभो मैं हम कहते देखा था जो दलहन का फसल बाटे वो कब बो दिया तो माटी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता तो
0: हाँ, वो
1: समझता ना।
0: संचित कह देते भैया
1: हाँ
0: नाइट्रोजन की
1: उपजाऊपन
0: मात्रा।
1: बढ़ जा। दूसर बात एक यह है कि होत का कि कोनो खेते में एक बिरामी लागत ना तो हर फसल में लागत चला जाता है। तो अगर बदलत रहेगा होगा तो बहुत बढ़िया रहे। एक बात हम पंचन से यो
0: ऐसे
1: कहा
0: देखा जो माटी का उर्वरा शक्ति बा ना वो बढ़त है, और साथे साथे जो खर पतवार वाली समस्या होत है
1: वो खत्म हो
0: वो
1: जाता
0: समस्या का भी समाधान हो जाता भैया
1: समाधान।
0: है। और जो पोषक तत्व तो और भी होते हैं भैया हैं माटी में, वो पोषक तत्वों तो का भी समय समय से पूर्ति हो जाता है।
1: तो हम
0: तो ये
1: कहते भाई
0: तरीके से
1: दिखाई
0: फसल चक्र
1: जो
0: जरूर अपनावे लोग भैया।
1: बाबा दादा का दिखाई रास्ता बाटे ही एक पंचन के व्यवहार में लाऊ चाहिए। और एक बात और कहा भाई देखा मटिए पे खेती हो के बाद मटिए से सान बाटे और माटी मजबूत ना रहे तो दिक्कत हो सकत है।
0: बिल्कुल
1: तो हम
0: बिल्कुल
1: कहते
0: भैया,
1: भाई कि सबसे बढ़िया तरीका ही बाटे जे पंचहरे भाई चुका हूँ तो भाई माटी का नमूना इकट्ठा करें ओकर ले जाए करके लैब में जांच करवा लें तो ऐसे पता चल जाए कि

0: भाई जोन आ वाला तूर बाटे ओमा कौने पोषक तत्व तो कमी बाटे
1: अब
0: कौने
1: देखा
0: पोषक।
1: भैया, जौन फसल चक्र के बात होत रही ना, उहो तब ज्यादा कारगर हुई जब माटी के जांच करवाई के लोग करिए।
0: तब
1: हैं
0: हाँ
1: माटी के जांच करे से अपने माटी के भैया पूरा जौन सेहत है ना, वो सेहत के बारे में जानकारी हो जात है। माटी के अंदर जौन पोषक तत्व हैं ओकरे बारे में जानकारी हो
0: हे
1: जात
0: मनु
1: है।
0: भैया एकर बहुत बढ़िया अठी कार्ड बनत समझत है ना
1: हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड
0: हाँ
1: भैया।
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो वहाँ कार्ड भैया बनवाए लिए ऊपर सब लिखवाए जाए का कब कोने तरीका से बात व्यवहार करे के बाटे। तब तो वैज्ञानिक सोच रखे हम कहते वहीं तरीके से आगे बढ़िए तो खेती किसानी अच्छी रहे। और हम कहा देखा भाई आज नीति वचन का दिन बाटे तब तो पंचायती नीति के बात सुनिए और उठी बातचीत भी बाटे ना भाई कि छिड़कवा विधि से धान की बुआई। तो हम कहा पहले कोनो बतकही होई तो ठीक कुछ गीत गौने सुना देता थोड़ी बहुत
1: अरे भाई, हम कहीं के देखा बतकही भी होई और नीत बचन भी होई। हैं बढ़िया बढ़िया बात हुई। मुल्ला देखा जो उन बात कहत बटा हमारे मन के बात छीन लिया एकदम।
0: हाँ।
1: सबसे पहले भैया देखा मुशर्रफ अली और संघातिन का गावा एक विकास गीत तुहु सुना पंचो सुने।
0: सुनवा दे भाई।

0: हाँ भैया मन्नू इतना गांव नहीं रही है विकास गिर पंचर सुनन और जोन बात कही होत रही भाई की देखा नीत की वचन के दिन बाटे तो नीत की बात में का कुछ अच्छी अच्छा गुण के बात बतावत हैं
1: बिल्कुल
0: देवदत्त
1: भैया।
0: तिवारी भैया तो हम कहते पंचरे सुने भाई व्यवहार में उतारें।
1: सुनवा दे भैया।
2: आज नीत वचन में चर्चा करेंगे समाज कैसा होना चाहिए, समाज में राजा कैसा होना चाहिए और प्रजा कैसी होनी चाहिए। समाज की वास्तविकता को बताते हुए नीत वचन ये कह रही है, धन शक्ति जिसका है वंश कुल उसका है, बंदी जन उसका ही करते हैं कीर्तिगान, उसे उच्च माने सब, सामने झुकाएं सिर, धर्म नए निपुण बनाते हैं यही विधान, अनुमान सत्य नहीं घोर भ्रम मूलक है, और सत्य क्या है उसका है क्या प्रमाण, ग्रास डाल देता जो उसी के तलवे चाट लेता, मेरी समझ में यह समाज है स्वान के समान। आज के समाज में दिखाई पड़ता है कि जिसके पास पैसा है उसे गुणगान करते हैं लोग, उसे उच्च माने सब सामने झुकाए सिर, उसे लोग ऊंचा मानते हैं उसके सामने सिर झुकाते हैं, धर्म ने निपुण बनाते हैं यही विधान, और हमारे नीतिज्ञ भी यही कह भी रहे हैं अनुमान सत्य नहीं घोर भ्रम मूलक है, लेकिन इसका इसकी वास्तविकता कुछ अलग है। सत्य क्या है और उसका है क्या प्रमाण, समाज का सत्य क्या है और उसका प्रमाण क्या है, ग्रास डाल देता जो उसी के तलवे चाट लेता, ग्रास में टुकड़ा जो टुकड़ा फेंकता उसे गुणगान होता है, मेरी समझ में ये समाज है स्वान के समान। आज का समाज कुत्ते की तरह है, जैसे उसके सामने टुकड़ा फेंक दीजिए तो वो पूंछ पीछे पीछे हिलाएगा, जबकि समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज आदर्श होना चाहिए और धनाढ्य आदमी की कीमत हो ये जरूरी समाज में नहीं है। और एक बात और, तुलसी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, ये समाज स्वार्थ बस लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, समाज में रहने वाले स्वार्थ बस एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर देवता नर मनुष्य मुनि सबका यही काम हो गया है, जबकि समाज में रहने वाले लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखो यदि समाज अच्छा नहीं होगा तो लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी, जरा यह सोच लीजिए, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को न मणिक, चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मानस सोच बस, कहें एक एकंश हो कहां जाए काकरी। खेती न किसान को, किसान खेती ठीक से नहीं कर पाएगा, भिखारी को न भीख बली और लोग भिक्षुक को भीख नहीं देंगे, वणिक को न वणिक व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, न चाकर को चाकरी मजदूर मजदूरी नहीं कर पाएगा, जीविका विहीन लोग जीविका विहीन हो जाएंगे, सीध मानस सोच बस सोचेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे कहां।

0: जाऊं और क्या करूं,
1: ये समाज की वास्तविकता होती जा रही है, इससे बचना चाहिए। एक बात आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह से, जिस देश का प्रशासन ठीक नहीं होगा उस देश में, उस समाज में रहने वाली प्रजा की स्थिति क्या होगी, ये भी आप विचार कीजिए। दुसह दुराज प्रजान को, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रविचंद्र। जिस समाज का राजा दुर्दांत है, दुष्ट है और उसके कर्मचारी निष्ठुरता काम करते हैं, ऐसे समाज में रहने वाले लोगों की, ऐसे समाज में रहने वाली प्रजा की स्थिति क्या होगी। ठीक वैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं, अमावस की काली रात पड़ जाती है। सही कहा गया है, दुसह दुजान प्रजान को क्यों न बढ़े दुग्धंद, अधिक अधेरो जकृत मिल मावस रविचंद। याद रखिए आप, नीत वचन हमारा आपको संदेश देता है, साथ साथ अच्छे समाज, अच्छे शासक, अच्छी प्रजा की कल्पना करता है, कामना करता है और वह बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जिस समाज का शासक निकृष्ट हो, समाज में रहने वाली प्रजा उसका समर्थन कर रही हो, उस समाज की क्या स्थिति होगी। इन पंक्तियों पर जरा विचार किया जाए। जाका गुर भी अंधला, जाका गुर भी अंधला, चेला निरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पलंत। जिसका गुरु मार्गदर्शक शासक निष्ठुर हो और प्रजा भी वैसे अंधी हो, परिणाम क्या होगा। अंधा अंधा ठेलिया, एक दूसरे से संघर्ष करेंगे और दोनों को गिरना पड़ेगा, अर्थात दोनों बर्बाद हो जाएंगे। न ऐसा समाज ठीक, न ऐसा शासक ठीक, न वहां कैसी प्रजा ठीक। याद रखिए, नीत वचन आपको जीवन जीने का संकेत देती है, अच्छे समाज की स्थापना पर बल देती है। अच्छे परिवार, अच्छे लोगों का हम सम्मान करते हैं, उसी की एक पंक्ति, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार। स्वार्थ सुकृति न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। स्वार्थ बस एक कीर्त के लिए, संपत्ति के लिए, एक शासक को अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसे प्रजा को देखनी चाहिए, प्रजा की समस्याओं को सुनना चाहिए, प्रजा के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। ऐ शासक, ऐ राजा, अपनी शक्ति के लिए, दूसरे के सम्मान के लिए, अपने मान को बढ़ाने के लिए प्रजा से तू कष्ट मत दे, प्रजा पर अन्याय मत कर, प्रजा को दुख में मत झेल। याद रखना आप लोग, नीत वचन का एक संकेत है, नीत वचन का यह संदेश है, समाज आदर्श हो, रहने वाले उचित हों, अच्छे हों, स्वाभिमानी हों, गौरवशील हों और शासक भी उत्कृष्ट हो। जिस समाज में रहने वाले राजा को अपनी प्रजा के सुख और दुख का पता ही न हो और उस समाज की प्रजा को राजा की सच्चाई का पता ही न हो, उस समाज में रहने वाला राजा प्रजा केवल इतना कहा जा सकता है, ऐसे समाज में रहने वाले राजा और प्रजा के लिए केवल इतना कहा जा सकता है, जिस समाज का राजा अंधा, जिस समाज का राजा अंधा, अंधी अरे प्रजा है, जिस समाज का राजा अंधा, अंधी अरे प्रजा है, उस समाज में जीवन जीना केवल एक सजा है। जिस समाज का राजा अंधा है और जिस समाज की प्रजा भी अंधी है, ऐसे समाज में जीना केवल सजा के समान है। अर्थात समाज श्रेष्ठ होना चाहिए, राजा भी श्रेष्ठ होना चाहिए और वहां में रहने वाली प्रजा भी श्रेष्ठ अपने आप बन जाएगी। यदि किसी देश का राजा अच्छा हो, याद रखिए, नीत वचन का संकेत, नीत वचन का संदेश, नीत वचन का अभिमान, यदि किसी देश का राजा अच्छा है, उसके कर्मचारी अच्छे हैं और ईमानदार हैं, उस देश की प्रजा कितनी खुशहाल होगी, समाज कितना अच्छा होगा, महाकवि तुलसीदास की ये पंक्ति संकेत कर रही है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब नरक रहे परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम भी राजा थे और उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी, लोग अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे थे और सब प्रेम से रह रहे थे। कोई शासक राम की तरह होना चाहिए और राज्य समाज राम राज जैसा समाज होना चाहिए और प्रजा भी उतनी खुशहाल हो जितना राम राज्य में प्रजा खुशहाल थी। जिस देश का, जिस समाज का, जिस समाज में

0: ऐसे लोग रहेंगे वह समाज उन्नतशील समाज कहलाएगा, तरक्की कहलाएगी। इसलिए कहा जाता है, वृक्ष कबहुं नहीं फल बखें, नदेन संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, पक्षी नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। इसी तरह से समाज में रहने वाले परमार्थी जो समाज की सेवा करते हैं, दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं। जिस समाज में ऐसे लोगों का निवास होता है वह समाज निसंदेह श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है। नीति वचन, नीति वाणी, उसी का यही संदेश है। वो पापान निवार्यत, संस्कृत में भी एक श्लोक है, पापान निवार्यत योजयते हिताय, पाप से दूर रखते हैं, कल्याण में लगाते हैं। समाज का यह रूप होना चाहिए। और अगर समाज ऐसा है, समाज का शासक श्रेष्ठ है, समाज में रहने वाली प्रजा भी उत्कृष्ट है, तो समाज का उत्थान, समाज की तरक्की निसंदेह होगी। नीति वचन का यह संदेश जन जन तक, जन मन तक, जन मन की आत्मा तक पहुंचनी चाहिए।
1: हाँ भैया मन्नू, ये तो देखो भाई, नीति की बात रही है कि बिल्कुल भैया, समाज में, परिवार में, व्यक्ति में का कुछ संबंध हो चाहिए, कैसे प्रेम सौहार्द हो चाहिए, ताकि सबका विकास, समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। तो भाई बहुत अच्छी हम कही देखा भाई, नीति वचन की बात रही, पंचरे सुनन एका गुणवो करें व्यवहार में उतारें।
2: अब बिल्कुल भाई, देखा कोनो भी जो नीत का बात होते ना, बड़े चिंतन मनन मंथन के बाद जो लोग महान लोग रहते हैं भैया, हैं संत ऋषि लोग जो है कि लिख गए, बता गए, उमन बहुत बड़ा अनुभव है,
1: बहुत
2: तो निश्चित तौर पे ओके सुने के चाहिए और गुने के चाहिए, वही से अपन समाज स्वस्थ रही, बढ़िया रही और राष्ट्र भी विकसित हुई।
1: ये भैया जे सुनेस गुनेस जिंदगी में अपनाएस, वो है तो देखा विकास करे, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, चाहे पारिवारिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे राष्ट्र का विकास हो, तो एका कुल पंचन का प्रमाण बाटे। एक बात देखा पंचन से यो कहा ही है कि भाई नीति में तमाम बात छुपी भी रहा थी, जैसे पर्यावरण का बात बाटे कि पेड़ पालो बा, प्रकृति बाटे, पहाड़ है, झरना है, नदी, ताल, पोखरा बाटे, तब हमार तो हर जिंदगी बा भाई।
2: बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो ना अपन पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है भैया, ये सब कुछ से मिलके ही तैयार होता और बनता है,
1: बनत है। अब देखा बारिश का मौसम आवत बाटे, बारिश शुरू हो सकत है, तो ऐसा में होता का कि देखा ज्यादातर पानी बह के चला जाते है, मुर उमुर कोनो मतलब ना निकरत। और पहले का परंपरा रही कि भाई हर गांव में चार छह घरे के आगे पीछे पोखरा तालाब रहा।
2: बिल्कुल भैया, पोखरा तालाब लोग खोदवा में बनवा में लोग जो ना और कहे कि बड़ा पुण्य का काम भाई,
1: बड़ा पुण्य का काम बाटे, तो उसे होत का रहा भाई कि वहाँ जो जल का जीव है वो पलत बढ़त रहे ना, साथ ही साथ भाई जानवरन का बारह महीना तक पानी पिए, नहाए धोए की व्यवस्था हो जात रही। दूसरी बात ये रहा भाई कि घरे का आसपास का जो पानी का जल स्तर रहा है ना,
2: भूमिगत जल स्तर भी बरकरार रहे, ऊपर जो
1: बना रहत रहा है, तो वो बात भाई जो काल प्रासंगिक रही हम तो भूल गए, मूल आज भी प्रासंगिक बाटे, वो याद करे के बा। यह बरे कि अगर जल बा, पर्यावरण बाटे, तबे जीवन बाटे, समझत है ना।
2: बिल्कुल भैया, हम तो कहब कि देखा हो, अब लोग तैयारी की भी करत बाटे, खेत का धान के रोपाई की तैयारी, तो मेड़बंदी वगैरह तो भाई हम कहें कि यही समय बढ़िया से लोग कई ले हैं,
1: खूब मजबूत
2: पता है। चले कि जब बरसात हो के पानी हर से भर बहे लगा था, तब फरसा लेके दौड़ा तो कोनो मतलब ना निकला
1: नहीं था। देखा बारिश के पानी को थाम ना सका, समझो था ना, अगर पहले से तैयारी ना ही बाटे। दूसरी बात ये कहा है कि देखा बहुत पंचरे जो बाग बगीचा का शौकीन है या जरूरत समझत हैं, तो भाई रेखांकन करे रहे ना, लेआउट जेका बोलत हैं, गड्ढा खुदाई कर तैयारी करे रहे ना, तो उन्हों तो नहीं चौकन्ना रहा, ऐसा ना माटी की ढू लगाया, बारिश बिल्कुल मट्टी बह गई।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो वह माटी भाई खाद मिला के तो पेड़ के साथ ही डाबा जाता है, समझता ना। तो यहाँ कुल स्तर पर पंचर का तैयार रहे के बाटे, चौकन्ना रहे के बाटे। और एक बात पंचर से यो कहा है कि भाई घरों द्वार तनी छाए मुँह नहीं रहें, कि ना बारिश हो जाए तो पता
2: नहीं। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल भाई, देखा तैयारी पहले से करे के पड़ता।
1: हाँ, अन्न अनाज रखे, पता चला को पानी गिर तो
2: नहीं नहीं, पहले से तैयारी रही तो कोनो दिक्कत ना हुई। तो बिल्कुल भैया, देखा बहुत सामयिक बात बताया और पंचन के बातन का ध्यान रखे के चाहिए। अब देखा एक ठे बातचीत बा, बड़ा सामयिक बा, छिटकवा विधि से धान के बुआई, यह पर भैया

0: का डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से बातचीत किए हैं रितेश कुमार शुक्ल।
1: हमको आप पंचायत का सुनवाए दो भाई।
0: हाँ हाँ सुन लो भैया।
2: किसान भाई बहुत स्वागत बा आपका अपने पंचायती में। आज अपने पंचायती में एक विशेष भेंट वार्ता बाटे जेमन डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आवा हैं, जे कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बा आपका। डॉक्टर साहब ई जोन मौसम चलत बाटे, ई खरीफ का जोन राजा फसल बाटे यानी कि धान जोन बाटे ओकर मौसम चलत बाटे, और भैया देखा डॉक्टर साहब हमरे यहाँ तो भैया देखा अलग अलग किसान भाई अरे अलग अलग तरीका अपनावत हैं, और जोन उनके पास जोनों जानकारी हो तो चाहे वो पुरखा पुरनिया से हो चाहे वो वैज्ञानिक भैया के द्वारा हो, अलग अलग तरीके से भाई धान के बुवाई होता, अलग अलग किस्म होता, ओकर अलग अलग रख रखाव होता, अलग अलग तरीका होता। तो जोन भी तरीका होता भाई सबका कुछ नफा होता, कुछ नुकसान होता, कुछ फायदा होता, तो अलग अलग तरीके में भैया कुछ विशेष जैसे छिटकावा विधि बाटे, ये छिटकावा विधि का बाटे और इका एक बारे में कुछ आप बतावें किसान भाई इनके।
3: देखिए जैसा किसान भाई आप सब जानते हैं कि हमारी धान की जो फसल है वो खरीफ में मुख्य फसल है, और किसान भाई इसकी तैयारी में बड़े मई माह से ही लग जाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: जिनको किसानों को रोपाई करनी होती है वो मई माह में अपनी नर्सरी डाल देते हैं, लेकिन नर्सरी डालकर रोपाई कराना इस समय बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो गया है, क्योंकि लेबर की उपलब्धता कम होने लगी है, लेबर समय से नहीं मिल पाते हैं, और इसमें इसके साथ साथ लेबर की उपलब्धता के साथ साथ इनका धन भी ज़्यादा लगता है उसकी रोपाई करवाने में, लागत ज़्यादा हो जाती है, और उत्पादन जब होता है तो लागत अगर हम ज़्यादा लगा देते हैं तो हमारा जो उससे कोई फ़ायदा है वो नहीं हो पाता है। तो देखिए ये जो धान की रोपाई का प्रचलन है ये हमारे देश में अभी 80-90 सालों से आया है, उससे पहले जो है हमारे जो पूर्वज थे वो सीधे धान की छिटकों विधि से बुआई करते थे
2: जी, जी।
3: और धान हमारा जो धान का पौधा है वो बना भी हमारी छिटकों विधि से फसल की बुआई के लिए, लेकिन हमने उसमें कुछ खरपतवारों की समस्या ज़्यादा आती थी उसकी वजह से उसको छोड़ा, और रोपाई करने में हम पहले अपना धान की पौध तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसकी रोपाई कर देते हैं, लेकिन छिटकों विधि जो हमारे पूर्वज करते थे वो कम लागत में अधिक उत्पादन लेते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो डॉक्टर साहब संसाधन भी कम रहा और छिटकवा विधि जोन होत रही कि भाई उमन जोन आपका मेहनत रही वो कम लगत रही
3: जी,
2: तो जोन छोड़े के का कारण रहा कि भाई छिटकवा विधि छोड़ के किसान भाई रोपाई विधि पे आई गए ने, एक बारे में बतावाई आपके काहे छोड़ दिए ने का।
3: देखिए जब छिटकवा विधि से बोते थे तो उनका जो है बुवाई से कुछ जो नुकसान होता था, चिड़िया दाने को चुग जाती थी बीज को, उससे नुकसान होता था, फिर जो बीज हमारा ऊपर पड़ा रहता था वो जो है सड़ जाता था, और एक निश्चित गहराई तक अगर हमारी फसल की जड़ें नहीं गई तो हम उससे उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए, और इसके साथ साथ खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, जब घन पौधे निकलते थे तो उसमें हवा पानी प्रकाश पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलता था, उसकी वजह से खरपतवार सबसे पहले तैयार हो जाते थे, और खरपतवार वो हमारे जो फसल की पौध है उसको दाब लेते थे, जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता था और रोग बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता था।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: इस वजह से छिटकों विधि को किसानों ने छोड़ा, लेकिन अब हमारे बीच में बहुत सी विधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि हम अगर सीधी बुवाई की बात करते हैं तो सीधी बुवाई में दो तरीके से हम बुवाई कर सकते हैं, उसमें हमको श्रम भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और पौधों का विकास भी अच्छा होगा।
2: बिल्कुल।
3: तो इसमें कुछ यंत्र भी आ गए हैं, जैसे आपका धान की बुवाई के लिए सीड ड्रिल आ गई है।
2: अच्छा।
3: उसमें खाद और एक खाने में खाद भर दी जाती है, एक में बीज भर दिया जाता है, दोनों एक साथ जो है खेत तैयार करके बो सकते हैं। इसमें दो विधियां भी हैं, जैसे कि गीली विधि से, मतलब या तो ड्राई में हम बुवाई करना चाहते हैं सीधी बुवाई, या वेट में करना चाहते हैं, तो दोनों विधियों को हम अपना के उसका लाभ ले सकते हैं और कम पैसे में।
2: डॉक्टर साहब आप बताएं कि जो नवा अनुसंधान बवा नई जो जानकारी आई गई बाटे, तो अगर सीधी बुवाई अब की जाए तो किसान भाई ज्यादा लाभ ले सकते हैं
3: जी।
2: एक बात आप ही बताएं कि अगर मशीन द्वारा एक बुवाई हो तो भाई बुवाई अच्छे से हो जाए और किसान भाइयों के अच्छी फसल मिले।
4: डॉक्टर साहब आप हमें ये बतावें कि अगर यंत्र के अलावा या जोन मशीन बाटे ओकरे अलावा अगर आदमी खुद से अगर एकर बुवाई करा चाहे तो वो कैसे करें, एकरे बारे में आप बतावें।
3: देखिए बैल, पहले हमारे पास बैल पर्याप्त मात्रा में थे, तो किसान भाई जो हमारे जो किसान थे वो कुंड में बुआई करते थे।
2: अच्छा।
3: नीचे खाद डालते थे और ऊपर बीज डालते, एक आदमी खाद डालता चला जाता था और दूसरा आदमी बीज डालता चला जाता था, तो उस लाइन में
2: जो हल रहत रहा, हल में बना रहत रहा
3: चोंगा, जी
2: जी,
3: जी।
2: वहीं में डालत रहे तो

0: के साथ भी उमन का नाम बा, एक तरफ से आपका खाद पड़त रही और एक तरफ से बीज पड़त रहा।
1: जी,
0: जी
1: उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये था कि नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: जब नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था तो खाद की पूरी पोषक तत्व की मात्रा लेकर बीज हमारा अंकुरित तो होता था और पौधा स्वस्थ होता था।
0: बिल्कुल
1: लेकिन समस्या ये थी कि वहां पर खरपतवारों की समस्या, सबसे पहले खरपतवार तन के खड़े हो जाते थे, वो नुकसान ज्यादा था। लेकिन अगर हमारे पास यंत्र नहीं है, हम बुआई करना चाहते हैं, तो बैल अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो चोंगे के सहायता से हम नीचे खाद और ऊपर बीज की बुआई कर सकते हैं।
0: हाँ
1: और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हमको बीज की मात्रा भी कम लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: 1 एकड़ में हमारा 8 से 10 किलोग्राम बीज लगेगा, और जबकि हम अगर रोपाई की बात करते हैं, रोपाई के लिए पौध तैयार करते हैं, तो 1 बीघे में हमारा हाइब्रिड है तो वो 3 केजी है, और नहीं तो अगर वाले जो देशी बीज है हमारे, वो कम से कम 10 किलो के आसपास हमको डालने पड़ते हैं।
0: तो
1: तो
0: कुल मिलाई के डॉक्टर साहब, अगर छिड़कावा विधि के नियंत्रित ढंग से अगर किया जाए, अगर नियंत्रण में हो के किया जाए, तो निश्चित तौर पर जोन आप बताएं कि भाई लागत तो कम लगे, साथ ही साथ जोन बीज का मात्रा रहे वह कम लगे, और जोन हमारा उत्पादन होए
1: जी
0: वह आपके रोपाई
1: बढ़ेगा।
0: के माध्यम से ज़्यादा होए, अगर
1: जी
0: रोपाई से किया
1: जी
0: जाए
1: जी
0: तो तुलना में ज़्यादा होए। तो डॉक्टर साहब ये तो बात भाई कि भाई दोनों विधि काहे एक दूसरे से अलग बाटे, ई जोन चीज बाटे खरपतवार की जोन समस्या आवत है, हम आपसे यह जानना चाहब कि भाई खरपतवार के अगर बुवाई के पहले कोनो ऐसा चीज की जाए कि खरपतवार ना आवे। जैसे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि भाई आपके का नाम भाई एक जोत लगाई के पानी भर देते हैं उमन, और जब मिट्टी आपके सूख जाता, सूख कायदे से कि जब आपका खेत सूख जाता, तो भाई वो जो खरपतवार की समस्या आवे वाली रहता वो कम हो जाता। तो
1: जी
0: कोनो ऐसा चीज आप विधि हो या यही विधि बाटे या एक अलावा कोनो विधि बाटे, ये बताओ आप।
1: देखिए, अगर धान की बुआई हम सीधी वेट उसमें करते हैं, गीली अवस्था में करते हैं, तो वहाँ पर हम खेत को बहुत अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: तैयार करने के बाद जैसे ही हम खेत को तैयार करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पीछे सीजन के खरपतवार के बीज होते हैं, वो सबसे पहले वो तैयार हो जाते हैं,
0: जी
1: वो
0: बिल्कुल
1: खरपतवार आ जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी
1: उसके बाद जब हम दूसरी जुताई करते हैं, तो उसके बाद जब दूसरी जुताई करके पलेवा लगा देते हैं, तो हमारे खरपतवार वहाँ पे नष्ट हो
0: नष्ट
1: जाते
0: हो
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: दूसरा, अगर हम सीधी बुआई कर रहे हैं, उसमें कोई खरपतवार नाशी प्रयोग करना है, तो बुआई के हमको 48 से 72 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन नामक दवा है, 30 cc की दवा है, उसका अगर हम छिड़काव खरपतवार से, हम बहुत हद तक सीधी बुआई में, बुआई
0: क्योंकि
1: के तुरंत
0: अड़तालीस
1: अड़तालीस से
0: घंटे के
1: बहत्तर 48 से 72 घंटे के अंदर।
0: बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर साहब मतलब कि जो समय बाटे ये बहुत महत्वपूर्ण समय बाटे, अगर किसान भाई सीधी बुआई करते हैं
1: जी
0: तो जो ना आप बताएं कि 72 घंटे के अंदर अंदर भैया अगर दवा का छिड़काव कर लें तो निश्चित तौर पर जो नहीं खरपतवार की समस्या होता भैया इसे बच सकते
1: उससे
0: हैं।
1: बच सकते हैं। जी
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं कि सीधी बुआई जो आप बताएं, तो सीधी बुआई के लिए कोनो विशेष तैयारी की जरूरत होता कि जैसे अपन खेत की तैयारी पहले रोपाई के लिए होत रही वही खेत में आप सीधी बुआई कर सकते हैं कि कुछ विशेष आपके काम करे के पड़े।
1: देखिए, सीधी बुआई में हमको विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, हमको नर्सरी नहीं डालने की आवश्यकता है, जो हम मई माह में डालते हैं वहाँ, उससे हमारी बचत हो सकती है। उसके बाद सीधे हमको खेत तैयार करके दो विधियों से, या तो गीली विधि से या सूखी विधि से। अगर हमको सूखी विधि से करना है, तो हमको खेत की अच्छी तरह कल्टीवेटर्स की सहायता से जोत कर उसको जो है बढ़िया से तैयार कर लेना है, खेत में समतल कर लेना है। समतलीकरण तो हमारी सीधी बुआई, जो छिटकुआ विधि से बुआई है, वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीजों का जमाव होगा।
0: हम आपसे एक बार और जानना चाहब डॉक्टर साहब, जो ना आप यंत्र के बारे में बतावत रहें कि भाई एक यंत्र होता उससे सीधी बुआई होता, उकरे बारे में रच के और थोड़ा विस्तृत रूप से बतावें कैसन यंत्र होता, कहाँ मिले और कैसे किसान भाई इसे लाभ ले सकते हैं।
1: देखिए, किसान भाइयों को दो यंत्र इसमें सीधी बुआई के लिए मिल सकते हैं। एक तो सीड ड्रिल होती है,
0: जी
1: सीड ड्रिल
0: जी
1: जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो सीड ड्रिल पे अनुदान भी देती है, वो ट्रैक्टर
0: अच्छा
1: चालित है।
0: अच्छा
1: दूसरा एक ड्रम सीडर है, ड्रम सीडर एक पूरा 8 किलो का हमारा वजन का होता है, प्लास्टिक का होता है, उसमें बॉक्स होते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: 8 बॉक्स होते हैं,
0: जी
1: उनमें
0: जी
1: हम
0: जी
1: बीज भर देते हैं,
0: अच्छा
1: और एक आदमी उसको बड़े आसानी से विपरीत दिशा में खींचते हुए चला सकता है, और सीधे उस लाइन में बुआई उससे हो सकती है। तो
0: बिल्कुल
1: दोनों
0: बिल्कुल
1: यंत्रों पर राज्य सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान को लेकर किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। और बीज की जहाँ तक बात है, तो बीज हमारा जो है 8 से 10 किलो 1 एकड़ में लगता है, और जबकि अगर हम रोपाई की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा 8 से 10 किलो 1 बीघे में लगता है, तो वहाँ बीज की बचत होती है।

0: अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो हमारी सिंचाई कम लगती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सिंचाई
1: बिल्कुल,
0: का हम सिंचाई का जो हमारा दर
1: लागत
0: है
1: लागत होगी वह
0: लागत,
1: कम हो
0: वो
1: जाएगी।
0: 35 से 40% हम बचा सकते
1: अच्छा
0: हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सीधे अगर हम लाइन में खाद डाल रहे हैं तो उसका भी हमको बहुत अच्छा उसका लाभ मिल सकता है, वहाँ भी हमारी लागत कम लगेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इतना डॉक्टर साहब सोच समझ के अगर इतना खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लाभ हुए। एक जोन और समस्या किसान भाइयों क्या हुआ था, वो बीज जनित जोन रोग होते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है कि कौनों फसल लगावे के पहले अगर जो बीजोपचार होता हो, बहुत ज़रूरी होता, अगर बीजोपचार कर लिया जाए तो बहुत तरह की बेरामी से बचा जा सकता
0: जी
1: था। अपने धान में जो बीजोपचार बा या ये जो सीधी बुवाई में जो बीजोपचार है, उसके बारे में किसान भाइयों के
0: देखिए,
1: बताओ।
0: बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी अगर हम फसल लेना चाह रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो अगर बीज उपचार हम करते हैं तो बीज उपचार से हम फसलों को आगे आने वाली रोग बीमारियों से तो बचाते ही हैं, और उस पर एक सुरक्षात्मक टीका लगा देते हैं। इसको हम ठीक उसी प्रकार से समझें जैसे हमारे आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है तो डॉक्टर टीके के लिए एक चार्ट बना के देता है, हम उसको
1: बिल्कुल
0: लगवाते हैं और सुरक्षित और स्वस्थ करते हैं। उसी तरह हमारा जो बीज है वो भी तो एक नन्ना शिशु के समान है, अगर उसमें हम सुरक्षात्मक टीका यानी बीज शोधन कर देते हैं तो आगे आने वाली बहुत सी रोग बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो जब धान की हम छपाई कर देते हैं, छपाई करने के बाद उसमें कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अगर हम डाल के उसमें मिला देते हैं, और मिलाने के बाद उसको छाया में सुखाकर उसकी बुआई करते हैं, तो इससे बहुत हद तक हम रोग
1: बिल्कुल
0: बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रोपाई विधि जोन बाटे उमन कहा जाता है कि जब पौधन की रोपाई की जाए या धान की रोपाई की जाए तो ओकर जो गहराई होता वो अगर पर्याप्त गहराई न रहे तो पौधा के गिरे के समस्या होता, पौधा गिर जाते ना फसल का नुकसान हो जाता।
0: जी
1: जोन ही सीधी बोवाई बाटे एमन बीज कितनी गहराई पर बोवा जाए कि हमके जोन पौधा का जोन लंबाई बा जोन ओकर विकास बा उचित हो सके और हमके अच्छा फसल मिल सके, तो कितनी गहराई होए के चाहे।
0: देखिए, गहराई का इसमें सीधी बुआई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर अगर हम उसकी गहराई रखते हैं बीज की बुआई में, तो हमारा जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से विकसित भी होगा, और सिंचाई जब हम करेंगे तो सिंचाई में वो पौधा नीचे, बीज जो हमारा नीचे जाके हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और जब 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर हम बोते हैं तो पौधा हमारी अच्छी प्रकार से जड़ पकड़ लेगा और स्वस्थ पौधा निकलेगा, और उससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो सारी बात भाई भाई सिंचाई से लेकर के खरपतवार से लेकर के कैसे उकर बुवाई की जाए, ये सारी बात भाई। एक हमरे मन में सवाल आवत बाटे कि कौनो विशेष किस्म बाटे सीधी बुवाई बरे, या आपका जोन संकर नस्ल हैं या जोन देसी नस्ल हैं, कौन ऐसी प्रजाति बाटे सीधी बुवाई बरे जो सबसे उपयुक्त बाटे किसान भाई ओकर उपयोग करें।
0: सीधी बुआई में दोनों प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं, चाहे वो देशी प्रजातियां हों। देशी प्रजाति में हमको बीज 8 से 10 किलोग्राम डालने की आवश्यकता है। अगर हम संकर प्रजाति का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको बीज प्रयोग करना पड़ेगा।
1: अच्छा। मोटा धान अगर लगावे तो जय कहा जाता है, अगर मोटा धान आप लगावते हैं तो ओकर जोन बुआई होता वो रज के दूर दूर पे हो तो ज़्यादा बेहतर होता, और जोन महीन धान होता भाई ओकर सघन बुआई होता।
0: जी
1: तो भाई अगर किसान भाई जोन डॉक्टर साहब बताएं कि भाई अगर देसी बाटे तो कितना लिया जाए और संकर नस्ल बाटे तो कितना लिया जाए, तो उस हिसाब से अगर किसान भाई बुआई करी तो निश्चित तौर पर उनके लाभ मिले। भैया देखा ये तो डॉक्टर साहब बात भाई किस्म का, और साथ ही साथ एक जो सवाल जात जात हम आपसे पूछा चाहब कि भाई बात पूरी बात भाई कि भाई रोपाई विधि कैसन बाटे और सीधी जो बुवाई होता वो कैसन होता, तो दोनों में आप ये डॉक्टर साहब बताएं कि दोनों में का अंतर बाटे, मतलब उत्पादन में का अंतर बाटे। मोटा मोटा हम आपसे ये जानना चाहब कि अगर कोनो किसान भाई चाहत बाटे कि हम नहीं सीधी बुवाई करब, अपन रोपाई वाली जो विधि बा ओकर छोड़ के हम के सीधी बुवाई करे के बाटे, तो किसान भाई की कितना फायदा मिले आप ही बताओ।
0: सीधी बुआई में एक तो सबसे बढ़िया किसान को फायदा ये मिलता है कि 8 से 10 दिन पहले हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है।
1: अच्छा
0: दूसरा, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो चूंकि इसमें उत्पादन हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं, एक लाइन में होते हैं, हवा पानी प्रकाश उनको पर्याप्त मिलता है, तो जब उसमें बालियां भी ज़्यादा आएंगी, और जब बालियां ज़्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा, और रोपाई की अपेक्षा इसमें हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: अच्छा।
0: तो कम से कम 15 से 20% उसमें उत्पादन में इजाफा होगा अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाए के कहे के मतलब ये बा कि भाई जोन डॉक्टर साहब जानकारी दिहेन कि भाई अगर छिटकवा विधि से धान के बुवाई की जाए तो निश्चित तौर पर फायदे में आपके सबसे बड़ा फायदा तो ये बा कि भाई फसल पहले तैयार हो।

0: जाए, पानी का जो ना आपका लागत बा, पानी आपके कम लगे, साथ ही साथ जो ना आपका मेहनत बा वह आपका कम हो जाए, और आपको उत्पादन जोन बा वो 10 से 15% ज़्यादा आपके उत्पादन मिले,
1: जी
0: आपको जोन रोपाई विधि हो बा। तो डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, नो किसान भाइयों के जोन जानकारी दिए, निश्चित तौर पर किसान भाई एक सुने हुई और अपने अगर अपने खेती किसानी में उपयोग में लेके आई तो भाई उनके फायदा हो, तो आप आए, निकले लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया
1: भैया
2: मनोज,
1: देखा छिटकवा विधि से धान का बुआई कितना बढ़िया ढंग से समझा समझा के डॉक्टर साहब बताएं, और वही तरीके से देखा अपने रितेश भैया फरियाई फरियाई के खूब पूछे ना।
2: हाँ भाई ये बड़ी उपयोगी जानकारी रही। हम कहते भाई मौसम भी चलते बाटे धान का, तो पंच भैया हरे एका अपनावे। और देखा भाई मनु, एक बात पंच से बार बार कहा जाता कि पारंपरिकता और आधुनिकता, समझते ना, दोनों का मेल अच्छी खेती या कोनो भी जिंदगी का पक्ष हो बहुत अच्छा
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: रहत।
1: बिल्कुल
2: न
1: भैया,
2: तो बहुत आधुनिक हुआ जा सकत, न बहुत पारंपरिक हुआ जा सकत। तो
1: जौने
2: क्या
1: चीज का जौन अच्छा चीज है ना भैया
2: ओ का
1: ओके
2: अपनाओ,
1: लेवे के
2: ओ का
1: चाहिए।
2: लेवे के चाहिए। और देखा भाई अच्छा चीज का बाटे ई प्लान परिपाटी का जब जज्बा परखबा ना, और मां नवा चीज का कैसे मिलावा जा सकत है ताकि आगे बढ़ा जा सके, तो ई जरूरत होता। तो वैज्ञानिक सोच का जरूरत बाटे भाई, पारंपरिकता के साथ में साथे साथ ही है कि खेती किसानी में समय का बड़ा मतलब
1: बहुत
2: निकल जाए,
1: बहुत समय और मौसम भैया।
2: समय का और मौसम का। खासतौर भाई जोन ई खरीफ का तूर बा ना भैया, धान पान और केरा, ई पानी का चेरा,
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: भाई धाने लगाओ धाने बो मूल तनी यो देखे रहा पंचरे की सींचे पाते का व्यवस्था बाटे। मान लगे अगर कुछ बारिश दाएं बाएं भ आगे पीछे भ 2-4 दिन का, तब फसल तो पानी के इंतजार न करे ना भाई, सूखा ही
1: बिल्कुल
2: लागत है, पीला
1: हाँ
2: पड़े
1: हाँ
2: लागत है। तो ये देखे रहा ब्यौरा व्यवस्था रहा, जरूरत पड़े तो भाई मोटर चलाए के पंपिंग सेट चलाए के
1: बिल्कुल, अपन
2: आदमी
1: देखा जौन भी बा पंपिंग सेट बा अपन पाइप बा जौन भी सुविधा बा सिंचाई का ओके पहले से दुरुस्त किए रहन। और सबसे बड़ी बात भैया कि देखा इस समय जौने भी खेत में धान लगवावे के है ओकर बहुत बढ़िया ढंग से मेड़बंदी कर ले, कौन उन्हें एकदम बिल्कुल तैयार रखें ताहे जैसे बारिश भय हैं खेत में लेव लगा कि रोपाई लोग शुरू कर दें।
2: तो हम समझे भाई पंचहरे गर्मी जुताई करे हुई हैं, और अगर सूखी गोबर का खाद छिड़के यहाँ तो अच्छी बात है, और ना छिड़क पाए हैं कोनो वजह से, तो अब हूँ भाई समय बाटे गोबरे का खाद छिड़क दें का,
1: बिल्कुल
2: ताकि
1: बिल्कुल
2: बारिश
1: भैया।
2: हो भाई तो गोबरे खाद रिस के जमीन में जाए, समझता है ना, और माटी का उपजाऊपन बढ़े। और
1: बिल्कुल
2: एक बात पंचायत यो कहा कि भाई देखा हम तो कहते ही रही थे, कार्यक्रम बनौते ही रही थे, सुनौते रही थे पंचायत का मूल पंच गहन का जाने की इच्छा बाटे का उनके बड़े और उपयोगी जानकारी हो सका था, तो एका उनका बतावे के बाटे, और बतावे के सबसे बढ़िया जरूरत और जरिया बाटे
1: हाँ
2: व्हाट्सएप से, समझते।
1: व्हाट्सअप भैया है, मोबाइल बा भैया, फेसबुक बा है, और देखा ये लिए हम नंबर जो है कि बार बार बतावा जाता, और बहुत से भैया लोग अपन मन जो है कि अपन राय भी व्यक्त करते हैं, अपन सुझाव भी देते हैं,
2: हाँ
1: और अपन कोनो अगर जानकारी लेवे के इच्छा होता तो ओहू के बतावत है लोग। तो देखा हम फिर से नंबर बतावत हैं, और जे लोग ना नोट किए हो के वो लोग नोट कर लें। तो नंबर बा भैया ये जो व्हाट्सअप नंबर बा 800-4926-2500,
2: फिर से बता दो भैया एकदम।
1: 800
2: हाँ,
1: 4926-2500।
2: तो हम कहते भाई आप विचार साझा करें, उनका कार्यक्रम में शामिल की जाए, वहाँ हिसाब से कार्यक्रम को बनवाए के रूपरेखा में
1: अब बिल्कुल भाई देखा
2: साझा।
1: खाली अगर एक तरफ से होता ना तो एक तरफा हो जाता है,
2: हाँ
1: तो भैया देखा अभी के साथ साथ चले चलाओ के बेरा हो गए, तो पंचन से आज्ञा लिया जाए, पंचो
2: राम
1: राम
2: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: तुम इतने दिन थी कहां, ढूंढता ही रहा। कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील।

0: मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालून ज़ादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एलडीए ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा 2014 में पास किया गया था, जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं

0: जिसके बाद 2016 में एलडीए ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
1: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है, और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: इस बीच आज एलडीए ने आग की चपेट में आई बिल्डिंग पर नोटिस लगाने की कार्रवाई की। इस नोटिस के जरिए एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। अगर एलडीए को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल करके इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं आग की घटना में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के बाद केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जनपदों में अस्पतालों, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान चलाया। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है, वहीं कई अन्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
2: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, के क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ है फायर सर्विस में। उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है। एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है, सुबह से हम इसी में लगे हुए हैं। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
3: आज उत्तर प्रदेश भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज नाबार्ड लखनऊ में एफपीओ राज्य स्तरीय कृषि चुनौतियों पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसान उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाली विभिन्न कृषि संबंधी चुनौतियां तथा उनके समाधान के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और वर्षा के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। कल कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अंतर्गत आने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पहले से तैयारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल स्रोतों के संरक्षण, हैंडपंपों के अनुरक्षण, तालाबों के पुनर्जीवन और जन जागरूकता कार्यक्रमों को

0: अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश भी दिये। भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालूनजादा ने आज रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और तजाकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि तजाकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक समझौता भी किया जाएगा।
1: तजाकिस्तान और भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर रजा पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात ये आई कि कुछ ग्रंथ यहाँ पर तजाकिस्तान से सीधा संबंध रख और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहाँ भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
2: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। बदायूं के कछला गंगा घाट पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरोहा के ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रशासन ने नेशनल हाईवे 9 पर रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है। बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि आगामी सप्ताह में मानसूनी गतिविधियां तेज होने के साथ प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का दिया निर्देश। विशेष टीमों ने जनपदों में निरीक्षण कर कई कोचिंग सेंटरों को किया सील। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और भारत में तजाकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालूनजादा ने आज रामपुर की रजा लाइब्रेरी का किया दौरा। कहा, दोनों देशों की साझा संस्कृतियों को सहेजी है ये पुस्तकालय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे, वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का।

0: بولتے نغمے श्रोता नमस्कार, वंदना जी नमस्कार,
1: नेहा जी नमस्कार, और सभी सुनने वालों को भी हमारा नमस्कार।
0: और बोलते नगमे में देखिए बड़े सारे नगमे ये

0: कह रहे हैं कि अरे भाई मेरे ऊपर भी तो बात की जाए, क्योंकि मैं वही गीत हूँ जिसने सिनेरियो को ही बदल कर रख दिया।
1: और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हर सप्ताह जो हमारी मुलाकात हमारे दोस्तों से हो, तो हम गीतों के ज़रिए उन भावनाओं पर बात करें जो भावनाएं हमारे दिल में कभी खुशियां जगाती हैं, कभी उदासी का मौसम ले आती हैं, कभी हमारे जीवन को एक नया रंग, नया अर्थ दे देती हैं। तो देखिए, ये जो गीत होते हैं लगता है कि हमारे भावनाओं का ही वो प्रतिनिधित्व कर रहे हों।
0: सच है, मतलब ये समझ में नहीं आता है कि जब हम खुश होते हैं, हम क्रोध में होते हैं, या हम रूठे हुए होते हैं, या फिर आँखों में जब आंसू होते हैं, कैसे हम ही अपने भावों को शब्द नहीं दे पाते। और कुछ गीतकार ऐसे हैं जैसे आनंद बख्शी साहब, वो भावों को देख लेते हैं और उन्हें शब्दों में ढालते हैं, और फिर आवाज़ की तो बात ही न कीजिए। सुर साम्राज्ञी के अगर उस बोल पर आवाज़ मिल जाए तो मुझे लगता है कि सदी का गाना बन जाता है।
1: बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही है नेहा जी, बात नहीं गीत समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली कौन सा गीत होगा ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, दिमाग पर जोर डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस पर तो कई गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और कई गीत लता जी ने गाए भी हैं, लेकिन मुझे इस समय थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है कि कौन सा गीत होगा जो आपने चुना होगा।
0: देखिए सुधीर श्रोता, इस बार मैं जीत गई हूँ, मैं पहली बार, क्योंकि मैंने क्लू दिया था, वंदना जी ने नहीं पकड़ा शायद। नहीं, अब नहीं, टाइम आपका समाप्त हो गया है। मैंने लास्ट में बोला था कि आंखों में आंसू होते हैं और कैसे गीतकार यानी आनंद बख्शी साहब उसको देख लेते हैं, अब मैं बताऊंगी, है ना। तो सुधीर श्रोताओं, हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब आप इस गीत को सुनेंगे तो वो जो भाव हैं, जब दिल टूटता है तो शायद आवाज़ भारी हो जाती है ना, हम अपने उस रूह को तलाश रहे होते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: अचानक से हमारा स्टूडियो कितना ठहर सा गया ना, होता ही कुछ ऐसा है जब कोई प्यार में होता है। पता नहीं कितने सारे स्वप्न दो लोग मिलके सजाते हैं कि एक छोटी सी बगिया होगी, बगिया में तरह तरह के फूल होंगे, और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैपन हो जाती हैं परिवार वालों के साथ, आसपास वालों के ज़रिए, जिससे शायद वो जो स्वप्न बन रहा होता है वो बनता ही चला जाता है, अचानक से उसमें टूटन आ जाता है।
1: प्रेम का स्वरूप तो ऐसा ही होता है, कभी बे इंतहा खुशी तो कभी बेतहाशा आंसू, उदासी, दुख, दर्द, विरह, मिलन, ये सारे जो भाव हैं, ये सारे जो मूड्स होते हैं अलग अलग हमारे दिल के, वो सब प्रेम में इस तरह से जाहिर होते हैं कि एक पहली सा सब कुछ नज़र आता है कि किस पल मौसम किस करवट बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। और जब

इस गीत को हम सुन रहे हैं तो बहुत सारी भावनाएं हमारी भी इस गीत के साथ शामिल हो जा रही हैं। और ये जो फिल्म है वो है बॉबी 1973 में जो बनी थी, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर साहब ने किया था और पटकथा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। और दोस्तों, डिंपल कपाड़िया ने मुख्य भूमिका निभाई है हीरोइन की, उनकी ये पहली फिल्म है। तो ऋषि कपूर साहब ने भी हीरो के रूप में पहली उनकी जो एंट्री होती है वो बॉबी फिल्म के साथ ही होती है। इसके पहले ऋषि कपूर साहब नजर आए थे राज कपूर अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर में, और ये फिल्म राज कपूर के दिल के बेहद करीब थी, उनका सपना थी। लेकिन सपना उस समय टूट गया जब मेरा नाम जोकर को वो सफलता नहीं मिली जो वो चाह रहे थे, और बहुत तरह से नुकसान उन्हें उठाना पड़ा व्यावसायिक रूप से भी। तब उन्होंने बॉबी फिल्म का निर्माण किया था, और जब बॉबी पर्दे पर आई तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

0: देखिए ज़रा इस गाने के जो बोल हैं, दिल की बुझती रहे प्यास, यानी हर दिल हर भावना की चाहत होती है, वो उसे पूर्ण होते हुए हर काया देखना भी चाहती है। तो बहुत सुंदर होता है जब वो भाव पूर्ण नहीं होते हैं, तो जब टूटने की आवाज़ आती है, तो लता जी तो मुझे लगता है कि इस कदर उन्होंने गाया है, ऐसा लगता है जैसे दिल की पुकार हो, अरदास हो, कि सीने में ही दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं, यानी हमने जो स्वप्न देखा है उसको टूटते हुए महसूस करना बहुत भारी जान पड़ता है। बहुत सुंदर लिरिक्स हैं, बहुत सुंदर आवाज़। एक और बात मुझे इस गीत की बहुत ख़ास लग रही है कि ये जो गम होते हैं वो शायद सबके नसीब में नहीं होते, वो कुछ लोग ही खास होते हैं जिनके नसीब में ये जो गम है वो आते हैं। ये शायद गीत ही हैं जब हमारे बुरे वक्त में, कठिन परिस्थितियों में हमको थामते हैं और आगे निकल जाने की प्रेरणा भी देते हैं।
1: और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है वो है इस फिल्म का संगीत, जो कि जादुई जान पड़ता है। और अमूमन जब हम राज कपूर साहब की बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी फिल्मों का संगीत शंकर जयकिशन के साथ ही पूरा होता है, लेकिन जब बॉबी फिल्म बनाई तो उन्होंने, राज कपूर साहब ने यानी, पहली बार संगीतकार के रूप में चुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और जब लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी बॉबी फिल्म के साथ जुड़ती है तो एक नया संगीत स्थापित होता है फिल्म संगीत जगत में।

0: इस गीत की जब हम पहली लाइन सुनते हैं दोस्तों मुखड़े के अंतर्गत, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, तो ये जो गीत है वो प्रेरित जान पड़ता है बाबा शेख फरीद जो कि एक सूफी संत रहे हैं, उनका एक दोहा है जिसमें वो बात कहते हैं कि कागा सप्तन खाइयों चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस।
1: हा, मतलब सब कुछ ले जाओ लेकिन इन्हें ना नष्ट करना, क्योंकि यही वो सहारा है जिनके जरिए मैंने जो स्वप्न देखे इन्हीं आँखों में तो रचे बसे हैं, मैं बार बार पलकें उठाऊंगी या बंद करके भी उन सारे स्वप्नों को देख सकती हूँ। आहा, बहुत बहुत आनंद है इस गीत में और बहुत गहराई भी है, सच में अच्छा लगा इसको सुनकर और बात करके। अब चलते हैं अपने नए गीत की ओर।
0: अब जब हम आगे अगले गीत की तरफ चल रहे हैं तो देखिए हम इस बार जो गीत चुनकर लाए हैं जहाँ पर बातें हो रही हैं मासूम से प्रेम की, यानी वो मोहब्बत जो एक कच्ची उम्र के साथ पलती बढ़ती है और अपना एक नया रूप लेती है, वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है। और ऐसी ही एक फिल्म आई थी 80 के दशक में ही जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी साहब का गीत है, लता जी की आवाज़ है और लता जी के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, फिल्म है एक दूजे के लिए और गीत ऐसा जो एक अनजानी सी डोर में हमें इस मजबूती के साथ बांध देता है कि बस उस बंधन को हम जीवन पर्यंत छुड़ा नहीं पाते हैं, और ये बंधन बड़ा ही खूबसूरत होता है, प्यार भरा होता है।

0: जिस गीत का मुखड़ा इतना सुंदर हो, आगे ये अंतरा अभी तो नहीं सुना, लेकिन जब हम लोग सुनेंगे और बातें करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जो जादू वाली बात हम लोग कहते रहे हैं वो फिर से जादू महसूस करेंगे। देखिए कितना सुंदर है, एक भाव जो दो लोगों के बीच पनपता है, उस बंधन को शायद हम नाम नहीं दे पाते, लेकिन शुरुआत में जानते भी नहीं हैं कि ये ख़ास तरह का एहसास जो खुशी देता है, जो शायद सारी खायनात से मुलाकात भी करवाता है, वो पनपने लगा है। उसका कोई नाम शुरू में सूझता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता, लेकिन हाँ एक समय ऐसा आता है जब शायद ये लगता है कि किसी और के बगैर रहना थोड़ा मुश्किल है।
1: और नेहा जी, वो अंतरा बिल्कुल तैयार है जिस अंतरे की आप बात कर रही थी, जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। तो देखिए यहाँ पर भी प्रेम इसी तरह से उजागर हो रहा है कि जैसे कोई दीपक होता है और एक पतंगा, एक परवाना जो होता है वो बस दीपक के जलने भर का इंतज़ार करता है और उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है, अपनी जान से भी चला जाता है, लेकिन जो क्षण भर का जीवन मिला है उस दीपक के साथ, उस दीपक के प्रकाश में जो वो अपने अस्तित्व को पहचानता है, वही प्रेम होता है और वही एक सच है। जहाँ पर चीज़ें बहुत क्षणिक जान पड़ती हैं लेकिन उसका जो रंग होता है वो बड़ा ही गहरा होता है, बड़ा ही असरदार होता है। तो चलिए हम भी सुनते चलें इस

0: ஓஹோ அப்படியா?
1: ஜெயசே சப் சமஜ் கயா.
2: இஸ்மே ரதி அக்னிஹோத்ரி ஜி நே ஜோ யே குலாபி ரங் கா दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर. मुझे इस गाने का ये जो कैमरा वर्क है, पूरा सीन है समुद्र के किनारे ये जो शूट हुआ है, और प्रेम कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकृति के पास से ही जन्म लेता है और वहीं पर फलता फूलता है. बहुत सटीक इस गाने को शूट किया गया है. ये जब बात होती है कि सामने जिससे लगाव रख रहे हैं उसी के नाम का जो कंगना है, ये सुहाग की निशानी मानी जाती है कि आप उसी के नाम का कंगन धारण करेंगे, और चाहे ये ज़माना कितना ही आड़े आ जाए लेकिन उस भाव में, उस प्रेम में इतनी ताकत है कि उसे पूर्ण करेंगे, उसी राह पर चलेंगे. मुझे लगता है कि ये साहस वाला काम है.
3: बिल्कुल नेहा जी, और देखिए प्रेम तो साहस का ही एक तरह से पर्याय ही होता है, क्योंकि साहस के बिना प्रेम निर्जीव है. और दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि एक दूजे के लिए ये फिल्म, इसका निर्देशन के बाला चंद्र साहब ने किया था, और उन्होंने अपनी ही बनाई एक फिल्म जो कि तेलुगु भाषा में बनी थी, मारो चरित्र, ये उसी की रीमेक रही है. और उत्तर और दक्षिण भारतीय भाषाई जो एक तरह से संघर्ष है, जो विवाद है, उसके बीच जो एक कहानी जन्म लेती है, प्रेम से जो भरी हुई है, बहुत ही पाकीज़ा है, मासूम सी है, जो कि कालजयी बन गई, और कालजयी बना ये खूबसूरत सा गीत.

0: परवा इल्ले नल्ला पादिरा। तो जो रति अग्निहोत्री होती हैं, लता जी की आवाज उनकी आवाज से मेल कराई गई है, तो कहते क्या इतना अच्छा लगता है कि दो लोग वो जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते लेकिन इंटेंशन, लगाव और फ्रिक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, कैसे मैच कर जाती है। जैसे जन्म के समय हर बच्चा या बच्ची भाषा नहीं जान रहे होते हैं, उनको सिखाते हैं तो, इसका मतलब सबसे पवित्र रूप में क्या है, भाव है। और जब हम इस गानों की श्रृंखला में चल रहे हैं जिन गानों ने सिल्वर स्क्रीन को नए अर्थ दिए हैं, तो एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, उसमें जूही चावला जी थी आमिर खान साहब, दोनों कितने छोटे मासूम से लेकिन अभिनय के मामले में एकदम परिपक्व पक्के।
1: जी हाँ नेहा जी, और देखिए इसी मासूमियत की छांव तले जो मासूम सा प्रेम पनपता है, उससे गढ़ी गई जो फिल्में पर्दों पर आई हैं, उन्हीं में से कुछ गीतों को चुना है इस बार हमने। और जब आप बात कयामत से कयामत तक की कर रही हैं, तो ये फिल्म 90 के दशक में आई थी और इसने सफलता का वो परचम लहराया जो आज तक देखने वालों के दिलों में पुख्ता है। तो अब ये जो बातें चलेंगी वो क्या कुछ कहेंगी वो हम पहले सुन लें, क्योंकि कोई एक पुकार सी हो रही है, वो एक इंतज़ार जो पूरा होने के मकाम पर आ चुका है। तो किस तरह से राहतें दी जा रही हैं एक दूसरे को,

0: जरा इंतजार। कई बार लोग धैर्य नहीं रखते और इस गाने में मजरूह सुल्तानपुरी साहब कहते हैं कि एक जरा इंतजार, अगर इंतजार करना थोड़ा भारी पड़ रहा हो तो देखो ये जो सदाएं हैं, ये जो अजान है, समय की पुकार है, उसको जरा हम दोनों ही सुने। तभी वो अगले पल कहते हैं कि ये जो तूफान अंदर चल रहा है, ये जो अंधेरा है, कैसे नहीं छटेगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इन गीतकारों ने जीवन को, भावों को देखा है। और निर्देशक ने शूट किया हु बहु प्यारी सी जूही चावला। ऐसा लगता है जैसे मासूमियत उस समय उन पर मेहरबान है। तभी सिल्वर स्क्रीन पर जब ये गाना रिलीज हुआ और मैंने रेडियो सेट पे, उस समय मैं बहुत छोटी थी, हाँ थी छोटी थी <जी। laughs> लोगों को ये सुनते हुए जहन में याद है कि सुना करते थे, पहले के रेडियो सेट थोड़े डिफरेंट आते थे ना
1: जी,
0: और उसमें जब ये लोग गाना सुनते थे तो लोग शायद थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दिया करते थे, यहाँ हम सुनेंगे, तो ये जादू ही होता रहा होगा।

अलग रूप में हमें सुनाई पड़ता है। और इससे जुड़ी एक बात हम ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, इस फिल्म को जब बनाया जा रहा था, मंसूर खान साहब ने इस फिल्म को बनाया है, तो संगीत की जब बात आई तब ये निर्णय लिया गया कि संगीत का काम, इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए राहुल देव वर्मन साहब को। लेकिन फिर मंसूर साहब को लगा कि नहीं, कुछ नयापन एक होना चाहिए, रिदम में कोई एक ऐसी बात हो जो युवा हैं उन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, वो सरसता, वो शब्दों के ज़रिए वो अर्थ जो कहे जा रहे हैं वहाँ तक चीज़ें सरल रूप में पहुँच सकें। इसलिए एक नए संगीतकार को चुना गया और ये संगीतकार थे महान संगीतकार चित्रगुप्त के सुपुत्र, जो कि दो सुपुत्र हैं, आनंद और मिलिंद।

0: वंदना जी, सच में हम लोगों ने शुरू किया चलते चलते चलते, आज इस अंक के लिए कहाँ आ गए? नहीं, क्विक शॉट में जरा देखें ना, जो अखियों पर हमने बात की है ना, दूसरा ये जो एक अनजाना सा बंधन है जो पता ही नहीं चलता, और तीसरा कि रोके ये तूफान भी नहीं रोक सकता
1: जी।
0: नहीं, बहुत सुंदर। तो अब आप अपनी बात कहिए।
2: नेहा जी, मेरी बात तो वहीं जाकर टिक गई है जहाँ पर इस समय घड़ी की सुइयां दिखाई पड़ रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि समय कुछ कह रहा है हमसे कि बस अब बातों को, गीतों को समेट लिया जाए, और अगली बार जब हम आएंगे तो इन गीतों से गुलजार करेंगे बोलते नगमे की महफिल। तो दोस्तों, दीजिए हमें इजाज़त।
0: नमस्कार।
2: बोलते नगमे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम बोलते नगमे। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के थे, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का गाना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए सुनते हैं फिल्म मस्ती का गीत आनंद राज आनंद की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई आनंद राज आनंद ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आइए सुनते हैं फिर।

हिना की कव्वाली सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर, मोहम्मद सईद और सतीश की आवाज़ों में, रचना और मौसीकी रविंद्र जैन की है।

फिल्म सिर्फ तुम के इस कव्वाली के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

इसी के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मूज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों

0: के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: डबरी फ्री मिशन मैनेजमेंट सिस्टम।
2: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
2: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
4: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना

0: चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद वो कल असेंबली में इस बारे में बयान देंगे। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपन्यार जिले के तहत यजाली सर्कल में नेपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी

0: अचानक सैलाब के सबब के पनियार जिले के तहत यजाली सर्कल में नीपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता है। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नीपको के प्रोजेक्ट के सरबरा ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है, जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासर कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासर अफराद से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपत में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायां तेजी का खतरा दरपेश है, जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। SDRF और NDRF और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: नायब सदर जनाब सीबी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया, जिसका उन्वान है VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इक्तदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नीज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तिताम इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सामाजिक इक्तसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खुसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबो हवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात की मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थी। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों, जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन, 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तिजारत, 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरलम के विजिंजाम बैनुल अक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगमेल बंदरगाह पर MSC लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिंजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। رانچی کے راجندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں میڈیکل سیٹوں کے الاٹمنٹ اور داخلوں کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کر

करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज ना अहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले दो दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब, गुजरात और मध्य प्रदेश, निज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकूवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कांगो को 0-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रियर के साथ तिजारती मुजाकरात की पेशरफ का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अबनाए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार में विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

0: तो इन छह श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे, आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या-क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा?
0: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि छह श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं, इन छह फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये छह श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब छह किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
0: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं,
1: जी
0: तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें दो बच्चे तो पोस्ट्यूमस जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का यह बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं, और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा
1: जी जी
0: और वो नित्य नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी
1: जी
0: जो कैटेगरी है, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं। इवन AI से रिलेटेड और इस
1: जी
0: प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में, छह जो श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं। तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त, कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
0: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हर एक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और

0: के मन में प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन। तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें यह भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
1: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि
0: जी
1: नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे। और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
0: जी
1: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
0: जी जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं। तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
1: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम
0: बिल्कुल
1: किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहां के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों
0: जी
1: तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है। तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने, और कार्यक्रम जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
0: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार हैं, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
1: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में, और अन्य सारे विभाग जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो।

0: ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सब से यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें, ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं, ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है, और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और
1: जी
2: मैं पैरा एथलीट हूँ, वो शॉर्ट पुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6वीं से लेकर 12वीं तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6वीं से लेकर 12वीं तक। फिर
1: जी जी
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कंपटीशन भी देते हैं। ऐसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ। इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना
1: बिल्कुल
2: चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी ऐसा ये सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया।

0: साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
1: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
0: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है।
1: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, so that's why I work on these stuff and yeah I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
0: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
1: राइट नाउ आई विल बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, एंड इफ फ्यूचर आई गेट द चांस टू इम्प्लीमेंट देम इन रियल लाइफ डेफिनेटली आई एम वेरी ईगर टू डू दैट, बट राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द सॉल्यूशंस एंड एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन माय स्टडीज आल्सो एज आई एम अ 10th ग्रेडर दिस ईयर।
0: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
1: It was something that I never dreamed of, and even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
0: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशंस के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
0: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल। वंश तयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
2: तो ये मौका मिले बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए, बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना, कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा। बहुत रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई एक, फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में, फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया, वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, लाइक साइबर पॉलिसी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम कि हाँ ही कैन डू, ही कैन सर्वाइव, तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने तो काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम, तो काफी अच्छा मौका था, फिर मैंने फिर काफी इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, और उस बच्चे को मैंने काफी नाइक टूडे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से, तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन बजाता सोशल वर्क में, तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मैं

0: अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
0: जी
1: है। हम आपसे और जानना
0: जी
1: चाहेंगे
0: जी
1: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
0: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए उनका। साथ में अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है, तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
2: सर आपको बहुत धन्यवाद।
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
2: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था। तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे। तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
1: जी
2: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है। तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गाँव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेट कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट चेस प्रोग्राम था, कंपटीशन था। तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल
2: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा
1: बिल्कुल
2: उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय
1: जी
2: संगीत का
1: जी
2: जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा।
1: जी और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
2: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है। तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
2: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है, तो आइए उनके इस सोल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की।
3: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो एआई इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे

0: चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
0: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म पत्थर के सनम के गाने से। इसे गाया है मुकेश ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए मजरूह के बोल, ओपी नैयर का संगीत और फिल्म का नाम है सीआईडी। आवाजें मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम।

आइए सुनते हैं फिल्म मृत्युदाता का गीत, विनोद राठौर, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। शब्द रचना समीर की और धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।

अगला गीत फिल्म जीवन मृत्यु से है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं फिल्म जीवन मृत्यु का ये प्यारा सा गीत।

और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में होगा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग यमन। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में

संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।